परशुराम पर श्री राम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक, मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर

सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे, वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

0: 6:55 होने को है, लीजिए अब सुनते हैं समाचार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकाई शीत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाइची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेश मन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धन दिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति, यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षट्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय

नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड अताऊ मेघराज मंचा को फितर फितर सपोर्ती रकायसाई उल्लांग प्रोसेस 10 बोर तर इंतरगासी ऑथेंटिकासी बर्बासिस आधार फासिलिटास ई साइन डान एनालिसिस डॉक्यूमेंट बर्बासिस ओचे एर अताऊ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पंगनाल कैरेक्टर ऑफ दिस क तंतुवान उतामा डारी आतुरान आमन मैन एफ चे आर ए बारू ताहुन डुआरी बुडुआ पुलु अन्नाम जुगा तरा दिमा सुकान का डालमन्या पोर्टल इनी तर इंटेग्रासी डंगन बासिस डाटा परमेंता उतामा डन बैंक बैंक तरमासुक पान तरमासुक नो मोर पेन आधार ओचे ई एन जी ओ डरपान डन सिस्टम उडिन विलिक ई चे आ ई अताओ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अताओ इंस्टीट्यूट अकुंतान पब्लिक इंडिया बागी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल इनी मंगुरांगी पकड़दान एडमिनिस्ट्रेटिव मंगहेमात वक्तु डान ममरिकान पंगलामान यंग सडरहाना डान लबिनियामान पोर्टल इनी मंचाको पमरोसेसान परमोहनान यंग लबी चपा डान डैशबोर्ड तर इंटरग्रेसी बर्बासिस लॉगिन बागी पमरिंता इंटीग्रेसी बर्बासिस आपे ई अताउ अंतर्मुखा पमरोगोरामान एप्लीकेशन डंगन बासिस डाटा बासिस डाटा बासिस डाटा बासिस डाटा उत्तमा मुमकिनकान वेरिफिकेशन यंग लबी चपट डान अकुरात पमंतवान का पातुवान यंग लबी बाइक डान पंगवासान यंग इफेक्टिव अतास पनरिमान डान पमानफातान कॉन्ट्रीब्यूसी असिंग सहिंगा मंपरकुवत का अमानन नेशनल माओपुन ताता कलोला यंग बाइक प्लेटफॉर्म इनी जुगा दिरंचांग उन्तुक मंगा कोमोदासी फितुर फितुर मसडपान सपर्ति चैटबोर्ड बर्बासिस कचरडासान बुआतान अताउ आई डान एक्सेस बर्बासिस सेलुलर डाला मलंचुरकन कार्तु ए ओ चे ई मंत्री डालाम नगरी मंगामाती बाबा मसाला मसाला अवाल यंग दिहाडापी डालाम सिस्टम ओ चे ई तला दी सला साइकान डालाम सिस्टम बारुएनी डान हाल इनी अकान मंबावा कम उडाहन बसार बागी लबी डारी लीमा जुता पा मंगां कार्तु ओ चे ई 17-2 पुलुता हुन कती का पासपोर बारु दी तरबितकान टिडा अकान परलू लागी मनरबितकान उलांग बुकु ओ चे ई डान नोमो रेगिस्ट्रासी पा मंगां कार्तु जुगा akan menjadi unik lebih lagi dengan kartu OCI digital masalah kehilangan atau kerusakan dokumen akan dieliminasi dan pemegang kartu akan dapat melakukan verifikasi secara mandiri dan real time. Kartu OCI elektronik atau Electronic Overseas Citizen of India adalah inisiatif yang berpusat pada warga negara untuk mengubah layanan OCI bagi diaspora India global melalui sistem yang sepenuhnya digital. Dalam sistem ini, para pemohon dapat menyelesaikan seluruh proses OCI secara online, mulai dari mengajukan permohonan dan mengunggah dokumen-dokumen pendukung hingga mengunduh kartu yang dihasilkan secara digital setelah mendapat persetujuan. Pemegang kartu yang sudah ada juga dapat memperoleh kartu OCI mereka secara digital dalam sebagian besar kasus tanpa memerlukan permohonan baru atau verifikasi fisik. Dalam pengaturan baru ini, persyaratan untuk menerbitkan ulang buku OCI setelah menerima paspor baru pada usia di atas 20 tahun telah dihapuskan. Namun demikian, para pemegang kartu perlu memperbarui detail-detail terkait paspor mereka secara online setiap kali paspor baru diterbitkan. Bagi para permohon, sistem ini memberikan pengalaman yang nyaman dan sepenuhnya digital yang menghilangkan kebutuhan akan kehadiran fisik. Memungkinkan akses kapan saja melalui perangkat seluler, mempercepat pemrosesan melalui penerbitan digital, menghilangkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik, dan memfasilitasi perjalanan yang lebih lancar dengan memungkinkan pembersihan imigrasi yang lebih cepat. Bagi pemerintah, sistem EOCI memastikan pemrosesan yang sepenuhnya online, mengurangi pekerjaan administratif dan biaya operasional, memperkuat manajemen data dan pelacakan terpusat serta terintegrasi dengan sistem imigrasi digital untuk verifikasi real-time di bandara-bandara. Hal ini menghasilkan verifikasi identitas yang lebih baik, keamanan yang ditingkatkan, dan pengurangan risiko penipuan. Peluncuran portal FCRA 2 SDCK 2 dan kartu EOCI merupakan pencapaian signifikan lainnya oleh Kementerian Dalam Negeri dalam memanfaatkan teknologi untuk tata kelola yang lebih baik dan pemberian layanan publik. Hal ini berkontribusi pada pembangunan sistem tata kelola yang lebih transparan, aman, dan berdaya digital. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan Siara Ria.

0: Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: मंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े

0: प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस, ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक

0: रही समय सीमा वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
3: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the

0: जिसमें सालाना समिट के दौरान जापान भारत के दरमियान इंसानी वसाइल के तबादले और तवाउन के लिए एक एक्शन प्लान शुरू किया था, जिसमें दोनों मुल्कों की तरफ से भारत से जापान के लिए 50,000 हुनरमंद और नीम हुनरमंद अमले समेत 5 साल में 5,00,000 अमले का तबादला का मंसूबा है। सालाना समिट के अलावा वजीर खारजा, वजीर दिफा, NSA, खारजा सेक्रेटरी और दीगर सतहों पर भी आला सतह के तबादले और मीटिंगें बाकायदा तौर पर होती रहती हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाए ताकाइची के साथ आज वसीतर उमूर पर तबादले ख्याल के मुंतजिर हैं, जिससे भारत और जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को मजीद वसत मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जापान की वज़ीर-ए-आज़म के भारत दौरे पर उनकी मेज़बानी करना उनके लिए बायस मसरत होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मोहतरमा ताकाइची की मुश्तरक कोशिशों के जरिए भारत और जापान भारत बहरुल काहल और उससे आगे भी अमन इस्तेकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एम्प्लॉज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर शरह सूद 8.25% रखने से मुतालिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। EPF स्कीम 1952 पर मेहनत और रोजगार की वजारत की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद इस शरह सूद का ऐलान किया गया है। EPFO ने अपने इलाकाई और जोनल दफातर को हिदायत दी है कि वो अराकीन के EPF खातों में मंजूर शुदा शरह के मुताबिक सूद की रकम मुंतकिल करे। हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराए ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: ज़राए ने बताया कि वजारत ने व्हाट्सएप की जानिब से किए गए अवामी ऐलान को नोट किया है, जिसके तहत व्हाट्सएप ने भारत समेत आलमी सतह पर यूजर नेम फीचर का मरहलेवार तरीके से आगाज किया है। व्हाट्सएप ने बताया कि यूजर नेम फीचर के फाल हो जाने के बाद पैगाम भेजने वाले का मोबाइल नंबर पहली मरतबा राबता करने वाले शख्स को नजर नहीं आएगा और इख्तियारी यूजर नेम की इजाफी कंट्रोल के लिए सेट की जा सकती है। ज़राए ने बताया कि इस बारे में तशवीश है कि यूजर नेम फीचर के जरिए ऑनलाइन धोखाधही, जालसाजी, डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामलों और जाली शनाख्त जाहिर करने जैसे जराइम में इजाफा हो सकता है। इस बारे में भी तशवीश है कि यूजर नेम फीचर जाली शनाख्त जाहिर करने और खुद को कोई और जाहिर करने जैसे मामलों को बढ़ावा देगा। ज़राए ने मजीद बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने मेटा को यह भी हिदायत दी है कि वो इस मामले पर मुशावरत खत्म होने से पहले यूजर नेम फीचर की शुरुआत ना करे। नई दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा में फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है, जो कौमी राजधानी में हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
0: दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि नया फ्रेमवर्क आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक मौजूदा इकदामात को जवाबित के वाहिद सेट के तहत यकजा करेगा और हर मौसम सरमा में अलग अलग अहकाम जारी किए बगैर इन जवाबित के बरवक्त निफाज को यकीनी बनाएगा। ये नोटिफिकेशन हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन CAQR के नजरसानीशुदा GRAP रहनुमा खतूत और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को भी यकजा करता है। नए जाब्तों के मुताबिक मजाज पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों को पूरी दिल्ली में साल भर पेट्रोल पंप, CNG और LPG स्टेशनों पर ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली से बाहर रजिस्टर BS6 इखराज से कम दर्जे की गाड़ियों का दिल्ली में दाखला ममनू रहेगा। न्यूज डेस्क से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री को अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल की तौसी दे दी है। जनाब मिस्री ने 15 जुलाई 2024 को खारजा सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदा संभाला था। वो जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारत के सफीर रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू हो गई है, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। यात्रियों का पहला जत्था सख्त सिक्योरिटी के दौरान आज सुबह सवेरे जम्मू से रवाना हुआ। यात्रा अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर, रिवायती नुनवन, पहलगाम और गंदरबल जिले में 14 किलोमीटर बालतल रास्ते से शुरू हुई। सीसीटीवी कैमरे और आरएफआईडी ट्रैकिंग रास्तों पर कसीर सती सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। यात्री जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH44 पर सफर करेंगे। यात्रा ट्रैफिक के लिए मुगल रोड और धार रोड जैसे मुतबादल रास्तों पर सख्त ममानियत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों पूरी तरह से सरगर्मी से जारी हैं। तकरीबन 4 लाख यात्रियों ने यात्रा के शुरू होने से पहले ही अपना इंदराज कराया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे ने अगले 2 दिन तक साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने मजीद कहा कि अगले 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। केरलम के ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश के कमजोर होने की तवक्को है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि केरलम के कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के अलावा तमाम जिलों में बारिश की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। कन्नूर और कासरगोड, जो कि गुज़िश्ता 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट पर थे, आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महकमे ने कोझिकोड जिले के लिए बदस्तूर येलो अलर्ट बरकरार रखा है। सीबीआई ने डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी केस में गुजरात के राजकोट से हरियाणा के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा है कि डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी के तहत एक खातून मोहम्मद शहरी को 2 मुख्तलिफ बैंक खातों से 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया था। शिकायत के मुताबिक मुतासर खातून को उन नामालूम अफराद की जानिब से धमकी भरे फोन कॉल मौसूल हुए थे, जो खुद को सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी अफसरान के तौर पर जाहिर कर रहे थे। फोन करने वाले नामालूम अफराद ने झूठे दावे किए थे कि खातून मोहम्मद शहरी के बैंक खाते को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उस मोहम्मद खातून को गिरफ्तारी और उनकी जायदाद जब्त करने की धमकी दी गई थी। अपने दावों को मोतबर साबित करने के लिए उन्होंने एक फर्जी कुर्की का हुक्म भी भेजा। तहकीकात के दौरान मजाज अदालत से ज़रूरी अहकाम हासिल करने के बाद मुतासर खातून को 2,65,000 रुपये रिफंड भी किए गए थे। सीबीआई ने आवाम को मशवरा दिया है कि वह धोखाधही पर मबनी सरकारी सरमायाकारी स्कीमों, कानून नाफिज करने या रेगुलेटरी एजेंसियों और डिजिटल गिरफ्तारी घपलों के नाम पर की गई फर्जी कॉल समेत साइबर धोखाधही के खिलाफ चौकन्ना रहें। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसकारों के जरिए जारी बिलवास्ता मुजाकरात कल दोहा में ख़त्म हो गए। कतर की हुकूमत की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस महीने की 9 तारीख को ईरान के साबिक रहबर आला अली खामेनाई की आखिरी रसूमात के बाद मुजाकरात जारी रखने से इत्तेफाक किया है। मीडिया के अफराद से बात करते हुए अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने बताया कि दोहा मुजाकरात खुश असलूबी से जारी हैं। कुछ तकनीकी सतह पर बातचीत पहले से ही जारी है। उन्होंने कहा कि अगले मरहले की बातचीत के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई के बाद मुजाकरात एक मुस्तहकम मौकफ के साथ किए जा रहे हैं। फीफा आलमी कप में बेल्जियम इजाफी वक्त में सेनेगल को 2-3 से हराने के बाद नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। इस तरह वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में अब बेल्जियम का मुकाबला अमरीका या बोस्निया हर्जेगोविना मैच के फातह से होगा। मर्दों के क्रिकेट में कल रात चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अलावामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 47 गेंदों में 68 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया जमीर। قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अमीन खान से राग मियां की तूड़ी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं उद्योग पत्रिका।

0: साथियों नमस्कार। कहा जाता है कि प्रबंधन किसी भी व्यवस्था या संस्था को संचालित करने की एक सफलता की कुंजी है। प्रबंधन किसी भी संस्था, संगठन या कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की कला और विज्ञान है। यह केवल संसाधनों का उपयोग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम समन्वय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। आज के प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते परिवेश में प्रभावी प्रबंधन की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी को। आप प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
1: धन्यवाद सर।
0: हेमेंद्र जी, ये प्रबंधन से हम क्या समझे, किस प्रकार का प्रबंधन? एक आर्थिक प्रबंधन भी है, सामाजिक प्रबंधन भी हो सकता है, वित्तीय प्रबंधन जिसे कहते हैं, और एक संस्था, ये प्रबंधन भी हो सकता है। हम किस रूप में आप इसे परिभाषित करेंगे, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है?
1: प्रबंधन एक ऐसा चीज है जिसको लोग, कुछ लोग जो है इसको एक करिकुलम के तरीके से देखते हैं, एक विषय के तौर पर देखते हैं, पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा होता है, चाहे वो उसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी ली हो, या चाहे उसने फॉर्मल एजुकेशन ली हो, चाहे उसने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली हो, पर हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा है। आपने बिल्कुल ही सही कहा कि प्रबंधन का जो बात है वो जीवन के हर पहलू पे है, चाहे समन का प्रबंधन करना हो, चाहे वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना हो, चाहे बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को प्रबंधन करना हो, या एक जीवन का अपने आप में एक प्रबंधन का स्थान है सर।
0: लेकिन हेमेंद्र जी, आजकल के दौर में, आज इस भागम भाग जिंदगी में और सबको आगे और आगे निकल जाने की दौड़ लगी हुई है, इस दौर में सबको यही चाहता है कि मुझे कुछ ज्यादा से ज्यादा मिले, तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो वित्तीय प्रबंधन है वो ज्यादा से ज्यादा गेन करने की होती है, इसे आप किस प्रकार देखेंगे?
1: वित्तीय प्रबंधन ज्यादा से ज्यादा गेन करने का तो है ही, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास है, क्योंकि आपके पास हमेशा सीमित होते हैं, तो उनको किस तरह से उपयोग किया जाए कि उनसे जो हमें रिटर्न मिल सके, उनका उपयोग कर सके, वो मैक्सिमम तरीके से कर सके, शायद वित्तीय प्रबंधन में भी यही मूल मंत्र है। देखिए, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट है या प्रबंधन का जो विचार है वो आया था कि जब किसी चीज की कमी हो तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, जैसे पैसे की कमी है, समय की कमी है, तो एक पहलू ये है कि जब संसाधन ज्यादा हो तो मैनेज कैसे किया जाए, एक संसाधन कम हो तो कैसे मैनेज किया जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है, समय की कमी है तो आप प्रबंधन करोगे, आपके पास वित्त की कमी है तो प्रबंधन करोगे, पर एट द सेम टाइम इसी तरह से इंफॉर्मेशन की अबंडेंस है। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इन्फोमेटिक्स में रह रहे हैं, हम जो है हर तरफ से सूचनाओं से घिरे हुए हैं। आज का जो युवा है उसके पास इतनी सूचनाएं अवेलेबल है, हम सबके पास इतनी सूचना अवेलेबल है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आसपास के सिस्टम से, आपके पास जो प्रबंधन करना पड़ रहा है वो अबंडेंस का मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। तो वित्तीय का

0: ये पास संसाधन नहीं होते हैं, उसे किस प्रकार से मैनेज करें।
1: बहुत ही अच्छी बात है आपने कही, और वही चीज जो है आप देखेंगे कि अभी जो प्रेजेंट परिस्थितियां हैं उसमें इस पे लेके ही ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। पहले बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा उम्दा आइडिया देते थे, पर इकोसिस्टम नहीं होने की वजह से वो आइडिया कभी ग्रो ही नहीं कर पाता था, वो व्यक्ति रिस्क नहीं ले पाता था। अब सरकार का भी ये एक मूवमेंट चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया जैसे है, या एक हर विश्वविद्यालय में हर कॉलेज में आजकल स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सेल बनाई जाती है, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति के पास विचार है, अगर आइडिया है, तो वो संसाधनों की कमी की वजह से पीछे ना रह जाए, इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। अब ये इकोसिस्टम रातों रात तो नहीं बन सकता है, अब इसमें एक कल्चरल शिफ्ट आ रहा है। जैसे बड़े बड़े संस्थान है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, IIT IIMs है, इनमें तो ये बड़ा एस्टेब्लिश हो चुका है कि भाई इनमें इकोसिस्टम में आप जो है एक इनोवेशन सेल्स बनाइए, एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाइए, बच्चों को स्टार्टअप का मौका दीजिए। और अब Tier 2 Tier 3 सिटीज में, छोटे विश्वविद्यालयों में, इनमें भी ये कल्चर आ रहा है, और मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कल्चर जो है जब थोड़े समय बाद पूरे भारत लेवल पर आएगा, तो आपका जो ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है कि आइडिया बहुत अच्छा है, अगर बीज बहुत अच्छा है पर उसको आसपास पानी, खाद, बिजली, प्रकाश ये ना मिले तो कैसे वो ग्रो करेगा। तो ये काम इकोसिस्टम अब विश्वविद्यालय कर रहे हैं, कॉलेजेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर कर रहे हैं, और सरकार कर रही है।
0: हेमेंद्र जी, यहाँ पर जब इकोसिस्टम की बात आती है तो हम इसे कई बार कैटेगराइज कर लेते हैं, इन द सेंस कि हम लोकलाइज कर लेते हैं। शहर की बात अलग होती है, गांव की बात अलग होती है, और गांव में भी गांव की बात, यानी कि जो बिल्कुल रिमोट एरिया है वहां पर हम कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आइडिया है, अच्छे विचार हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, तो इसे किस प्रकार मैनेज किया जाए।
1: ये आपने बहुत ही एक पर्टिनेंट बात बोली है कि गांवों की समस्याएं अलग है, शहरों की समस्याएं अलग है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अलग समस्याएं हैं। पर जब ये उद्यमिता का आइडिया आया या एंटरप्रेन्योरशिप का जो आइडिया आया, तो पहले हमने कुछ समय तक ये देखा कि ज्यादातर लोग जो है जो ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर जो समस्याएं हैं और उनका जो समाधान निकला, जैसे ये टैक्सी की एग्रीगेटर्स का आइडिया आया या जहां आया, तो हमने वहां के कॉन्टेक्स्ट में जो आइडिया डेवलप हुआ उसी को हमने यहाँ पर भी कॉपी करने की कोशिश करी। पर आपने ये बताया कि गांवों की समस्याएं अलग है, एक किसान की समस्या अलग है, गांव के युवा की समस्याएं अलग है, तो उनके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव है। पर अब समस्या मेन क्या है कि उनकी अवेयरनेस, जिस इंटेंट के साथ ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं, अगर इसकी अवेयरनेस को अगर ठीक किया जाए तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है तो आज का तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो अपना आइडिया सोशल मीडिया पर लगाए, वो अपना आइडिया कहीं डिस्कस करे, फोरम पर डिस्कस करे, और उसके आइडिया में मेरिट है, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरी आपको मिल जाएगी कि कहीं गांव से कोई आइडिया निकला, किसी ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको फंडिंग की गई, और वो आर डूइंग ग्रेट।
0: हर कोई चाहता है कि उसका जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो वो बढ़े, और इसके लिए वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। साथ में सरकार भी कहती है कि आप एक जॉब क्रिएटर बने, जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने, लेकिन इसमें आगे चलकर भी कई सारी परेशानियां होती हैं, तो इसको किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाए।
1: जॉब क्रिएटर की जो बात है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में, और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत होंगे, और अगर विकसित भारत बनना है तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक इकोनॉमी में एक अच्छा खासा बैलेंस बना रहे, और उस बैलेंस को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाएगी कि हम जॉब क्रिएटर कैसे बने। अब जॉब क्रिएटर में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आइडिया को लेके स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग में कुछ समस्याएं आती है, उससे घबरा के वो अपना आइडिया बंद कर देते हैं या बिजनेस बंद कर देते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप का जो फेलियर रेट है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई है। पर इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी जब नई शुरुआत करते हैं, और स्पेशली युवा के अंदर वो शक्ति है, भारत के अंदर वो शक्ति है कि वो हमारी लोकल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर अगर कोई भी आइडिया थोड़ा सा भी हिट कर गया, क्लिक कर गया, तो मार्केट इतना बड़ा है कि जो हम कहते हैं ना यूनिकॉर्न बनना, वो तो अगर कोई बन गया आइडिया तो शेयर मार्केट इंडिया में इतना है कि वो यूनिकॉर्न बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि कोई भी आइडिया अगर आपने कंसेप्चुलाइज किया और उसको आप अगर समय देना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। तो धैर्य अगर आप रखेंगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, और अगर आप संसाधनों का सही से उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये स्टार्टअप फेलियर रेट है ये कम हो सकता है, सक्सेस रेट बढ़ सकता है, और सही मायने में जॉब क्रिएटर बन सकते हैं।
0: जी हेमेंद्र जी, आज डिजिटल युग है, तकनीकी युग है, इनोवेशन का युग है, तो इसमें जो प्रबंधन की जो कार्यशैली है, स्टाइल है, काम करने की जो शैली है, वो किस प्रकार से आज का जो डिजिटल युग है वो प्रभावित कर रहा है।
1: AI को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न आजकल आ रहा है, और प्रबंधन में आपने बिल्कुल कहा कि जो काम पहले चार लोग करते थे, जो

0: काम रूटीन रिपीटेटिव होते थे, वो रूटीन रिपीटेटिव काम जो है वो मैनेजमेंट में जो हम सिखाते थे, ट्रेन करते थे, वो काफी हद तक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
1: तो इसका मतलब हम ये समझे कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब जगह ले रही है तो कुछ काम आसान हो गया, आपको ऐसा नहीं लगता है?
0: कुछ काम बहुत आसान हो गया है, पर इसके प्रति जो एक ये नेगेटिव माइंडसेट बन गया है कि ये जॉब ले लेगा, मुझे लगता है कि ये ओवरस्टेटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। जब कंप्यूटराइजेशन आया तब भी एक डर था। हाँ, ये जरूर है कि एआई का मोमेंटम स्पेक्ट्रम जो आ रहा है वो बहुत हाई है, और अब वही व्यक्ति सर्वाइव करेंगे जो एआई को रिस्पॉन्सिबल तरीके से, एडवांटेजेस तरीके से यूज कर पाएंगे। आप अगर ये कहेंगे मैं समय के बदलाव के साथ एआई के साथ लिटरेट नहीं होना चाहता हूं, मैं एआई के कंधे के साथ कंधा मिला के लिए तैयार नहीं हूं, तो मुझे लगता है कि आपको समस्या आएगी। पर जो अब डिफरेंशिएटर ये बन जाएगा कि मैं एआई को अच्छा यूज कर पाता हूं, कोई और एआई को अच्छा यूज नहीं कर पाएगा, तो मैं सर्वाइव करूंगा, उसको दिक्कत आएगी। पर ऐसा नहीं है, नए तरह के जॉब आएंगे, एआई में अपने आप में जॉब आएंगे। पर इसमें मैं एक बात जरूर आपसे ये कहूंगा, हमें एआई में भी ये समझने की जरूरत है, भारत जैसे देश में हमें सिर्फ एआई का कंज्यूमर मार्केट नहीं बनना है, एआई का यूजर मार्केट नहीं बनना है, एआई के डेवलपमेंट साइड में जाने की जरूरत है। पॉइंट है कि हमें देखना है कि अब हम एआई की बात कर रहे हैं तो हम एआई के यूजर हैं या एआई के सर्विस प्रोवाइडर हैं।
1: तो कंप्लीटली हमें एआई पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए?
0: मुझे नहीं लगता है कि हमें एआई पे डिपेंडेंट होना चाहिए या हम एआई पे डिपेंडेंट कभी हो पाएंगे। एक बैलेंस है, एक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई रहेगा और वो उसका इथिकल यूज करना पड़ेगा, जिसलिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आज नहीं तो कल आएंगे, जिसमें एक डिमार्केशन लाइन बनेगी कि कब एआई को रिस्पॉन्सिबल यूज किया जाए और कब ये डेंजरस हो सके।
1: और आज जो है सोशल मीडिया किस प्रकार से प्रबंधन को, मैनेजमेंट को प्रभावित कर रहा है?
0: सोशल मीडिया ने जो बिजनेस की रीच है, बिजनेस का कवरेज है, आइडिया की वायरलिटी है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उद्यमों को, बिजनेसों को फायदा किया है। आज मेरा आइडिया है, प्रोडक्ट है, मैं किसी भी सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ, मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं एक्सेस है, उतना मेरे पास बजट नहीं है, इतना मैं कैटर नहीं कर पाता हूँ, तो मैं आराम से सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट की नीड को कैटर कर पा रहा हूँ। तो सोशल मीडिया एक डबल एजेड सॉर्ड है, क्योंकि इससे मेरा रीच एंड कवरेज तो बढ़ गया, पर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन सोशल मीडिया तो रातों रात मेरे को जो है बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है।
1: अर्श से फर्श पर आ सकते हैं,
0: अर्श से फर्श पर आ सकते हैं, पर एट द सेम टाइम ये जो रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो ये सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है।
1: चाहे कोई संस्था हो या फिर कोई ऐसी व्यवस्था है या कह सकते हैं कोई स्टार्टअप हो, तो उसको चलाने के लिए टीम वर्क की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसमें टीम वर्क की क्या नेतृत्व हो सकती है, इसमें किस प्रकार से एक टीम वर्क किसी भी संस्था को, किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी कंपनी को, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए भूमिका निभाती है?
0: टीम वर्क हर जगह जरूरी है। टीम वर्क आप देखते होंगे क्रिकेट के मैदान में भी, एक व्यक्ति के अच्छे खेलने से टीम नहीं जीत जाती है। देखिए, प्लेयर्स अगर अच्छा करते हैं तो टीम अच्छा करती है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही, स्टार्टअप में सिर्फ एक जो इन्वेस्टर है या एक जो एंटरप्रेन्योर है जिसने फंड रेज किया है उसके करने से अच्छा नहीं चल रहा है। टीम वर्क एक नेसेसिटी है। परिवार को भी अच्छा चलाने के लिए सारे परिवार के सदस्यों का सामूहिक प्रयास होता है, समाज को चलाने के लिए भी सामूहिक प्रयास होता है, देश को चलाने के लिए भी सामूहिक प्रयास होता है। उसी तरह से एक बिजनेस को चलाने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है।
1: हेमेंद्र डांगी जी, उसे समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट और दूसरी तरफ होता है कि रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है?
0: टाइम भी अपने आप में एक रिसोर्स है, तो रिसोर्सेज में जब हम बात करते हैं तो जनरली मेन मटेरियल, मशीन, मनी और आज की डेट में मैं कहूंगा इन्फॉर्मेशन। तो हम हिस्टोरिकली ये बोलते थे कि एम्स होते हैं, मेन मटेरियल मशीन मनी, पर आज की डेट में अब इसको मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी में से एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है टाइम, क्योंकि सबके पास समय तो वही है, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी। व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल एंड व्हाट मेक नॉट मी सक्सेसफुल इज द टाइम मैनेजमेंट। तो उस टाइम को जो बेहतर मैनेज कर लेता है वो इतिहास रच लेता है, और जो नहीं कर पाता है वो एक साधारण बन के रह जाता है।
1: एक देखा जाता है कि जो सार्वजनिक संस्थान है, पब्लिक सेक्टर्स है और प्राइवेट सेक्टर्स है, उन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है, ऐसा क्यों, और उसमें प्रबंधन की क्या भूमिका होती है?
0: प्रबंधन की भूमिका दोनों में सेम है, ओनली थिंग इज जो मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है। उस सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी को प्राइवेट में कहीं ना कहीं ज्यादा क्लियरली मॉनिटर किया जाता है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। एक समय पे इतना नहीं मैनेज किया जा सकता है, पर अब परिस्थितियां वहां पे भी चेंज हो रही है, गवर्नेंस में एफिशिएंसी आ रही है, पर एक कल्चरल शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, पर अब जो देख रहे हैं हम, अब वो फर्क नहीं रह गया है।
1: तो इसके क्या कारण हो सकते हैं?
0: उसका कारण यही है सर कि जो ये परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन इसीलिए आ रहा है कि अब जो है स्टेक होल्डर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, कंज्यूमर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। अब ओवरऑल जो सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसलिए अब पब्लिक सेक्टर भी बहुत ही अकाउंटेबल होते जा रहे हैं, और होना भी चाहिए, ये एक एफिशिएंसी का पैरामीटर।
1: हमारे देश की युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति

0: और सक्षम भी है, तो इसे प्रबंधन कौशल कैसे उनसे विकसित करवाया जा सकता है या फिर कर सकती है?
1: हमारी जो शक्ति है वो यही है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, हमारी शायद एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है यूथ का जो बोलबाला है वो बहुत अच्छा है, और इस यूथ को ठीक से चैनलाइज किया जाए तो ये एक कीर्तिमान रह सकते हैं, और मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
0: प्रबंधन केवल एक सामाजिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि किसी भी संगठन की सफलता का आधार होता है, और प्रभावी प्रबंधन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना ये सुनिश्चित करता है, कार्य कुशलता को बढ़ाता है और संगठन को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण मदद करता है। प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने वक्त निकाला और प्रबंधन के विषय में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आपने छुआ, बहुत सारी बातों को आपने उजागर किया, जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद सर।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akash.

0: 당근.
1: घर आंगन के आज की प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। शो की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के एक प्रेरणादायक विचार से। सर्वोच्च शिक्षा वो है जो केवल हमें जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त सृष्टि के साथ सामंजस्य में जीना भी सिखाती है। सच है, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है दोस्तों, बेहतर इंसान बनना भी है। साथ ही साथ आज हम विश्व खेल पत्रकार दिवस पर उन सभी खेल पत्रकारों को भी नमन करते हैं जो खिलाड़ियों के संघर्ष, उपलब्धियों और प्रेरणादायक जो कहानियां हैं उनको दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक मिनट, अभी मैंने आज का सवाल तो बताया ही नहीं। तो आज का सवाल है, खाली वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं, यानी आपकी हॉबी क्या है। अपना जवाब हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हमें आपके संदेश का इंतजार रहेगा।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म धरती से। और अब हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने उस दौर में इतिहास रचा जब महिलाओं के लिए घर की चौखट पार करना भी आसान नहीं था। यह कहानी है भारत की पहली महिला स्नातक डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली की। कादम्बिनी गांगुली ने उस समय समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी जब लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पढ़ाई के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पहुंचने की कल्पना भी उस समय बहुत कम महिलाएं कर सकती थी। साल 1883 में कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु ने इतिहास रचा। वो भारत की पहले महिला स्नातक बनी। उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से प्राप्त की। उस समय ये उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी बल्कि भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा के नए युग का आरंभ था। उनकी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बेथुने कॉलेज जुड़ा था जिसे भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय माना जाता था। लेकिन कादम्बिनी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की और भारत की पहली महिला चिकित्सकों में अपना स्थान बनाया। जिस समय महिलाओं का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ही असाधारण माना जाता था, उस समय उन्होंने डॉक्टर बनकर समाज की सोच को बदल दिया। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली केवल एक डॉक्टर नहीं थी बल्कि महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और अधिकारों की सशक्त प्रतीक भी थी। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, सीमाएं हमारे मन में होती है। कादम्बिनी गांगुली की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक साहसिक निर्णय से होती है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो वो केवल अपना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का रास्ता भी रोशन करती है।

अभी हम सुन रहे थे मिन मिनी को फिल्म रोजा से। और दोस्तों, कहते हैं किसी देश की असली पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं बल्कि उस ज्ञान, संस्कृति और आविष्कारों से होती है जो वो पूरी दुनिया को देता है। तो आज हम बात करते हैं उन अनमोल सौगातों की जो भारत ने विश्व को दी और जिसके बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना भी अधूरी लगती है। तो सबसे पहले बात शतरंज की। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग शतरंज खेलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत भारत में चतुरंग नामक खेल के रूप में लगभग 6वीं शताब्दी में हुई थी और यहीं से ये खेल पूरे विश्व तक पहुंचा। और अब बात करते हैं शून्य का। गणित की दुनिया में शून्य का महत्व इतना बड़ा है कि इसके बिना आधुनिक विज्ञान, कंप्यूटर और तकनीक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की एक और अनमोल देन है चिकित्सा विज्ञान। लगभग 2600 वर्ष पहले महान वैद्य सुश्रुत ने सैकड़ों शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन किया है। उन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी जैसी जटिल तकनीकों का भी उल्लेख किया था। और दोस्तों, आज हम सभी शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैम्पू शब्द हिंदी के चंपी यानी सिर की मालिश से निकला है। भारत में सदियों पहले रीठा, शिकाकाई और आंवला जैसे प्राकृतिक पदार्थों से बालों की सफाई और देखभाल की परंपरा रही है। बाद में यही विचार दुनिया भर में शैम्पू के रूप में लोकप्रिय हुआ। कपास और सूती वस्त्रों की कहानी भी कम रोचक नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय 3100 ईसा पूर्व भारत दुनिया के उन शुरुआती क्षेत्रों में था जहां कपास की खेती और उससे वस्त्र बनाने की कला विकसित हुई और डायमंड्स यानी हीरे। हजारों वर्षों तक भारत ही दुनिया में हीरों का एकमात्र ज्ञात स्रोत था। गोलकुंडा की खदानों से निकले अनेक प्रसिद्ध हीरो ने विश्व इतिहास में अलग पहचान बनाई। दुनिया के सबसे चर्चित हीरो में से एक कोहिनूर भी भारत की धरती से ही निकला था। इतना ही नहीं, योग, आयुर्वेद, दशमलव प्रणाली और ध्यान की परंपरा जैसी अनेक अमूल्य धरोहरें भारत ने विश्व को दी है, जिनका प्रभाव आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में दिखाई देता है। तो अगली बार जब आप शतरंज की बिसात बिछाएं, शून्य का प्रयोग करें या शैम्पू से बाल धोएं, तो याद रखिएगा इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं भारत की समृद्ध विरासत

0: अभी हम सुन रहे थे महेंद्र कपूर को, फिल्म थी पूरब और पश्चिम। और हमारे पास कुछ मेल्स भी आए हैं। नवीन भाटिया जी लिखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं वो रेडियो एफएम गोल्ड भी सुनते हैं। और रश्मि कपूरिया, राधा वंदना, नीता, अंजू श्रृंखला, स्निग्धा वासु, सारिका, ये सब उस खाली समय में पुराने गीतों पर आधारित डम्ब शराज खेलते हैं। सुदर्शन मुखी जी पुस्तक पढ़ते हैं और संगीत सुनते हैं। चरण दास जी भी पुस्तक पढ़ते हैं और संगीत सुनते हैं। और महेश अग्रवाल जी को हमारी जानकारी बहुत पसंद आई और अभी अभी जो गाना सुन रहे थे वो भी बहुत पसंद आई। आप सबका मेल्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, आप लोग खाली वक्त में क्या करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। आपके संदेश का रहेगा हमें इंतजार।
1: ओ, सजना।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म परख से। और दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसी अद्भुत संरचना की जो धरती के भीतर उतरती है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो कोई मंदिर उल्टा खड़ा हो।

जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के पाटन जिले में स्थित रानी की वाव की, जिसे भारत की सबसे भव्य और अनोखी बावड़ियों में से एक गिना जाता है। करीब 900 वर्ष पुरानी इस अद्भुत धरोहर का निर्माण 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में करवाया था। वाव यानी सीढ़ीदार कुआं। लेकिन रानी की वाव सिर्फ पानी संग्रह करने का साधन नहीं थी, बल्कि यह कला, संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत संगम है। रानी की वाव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी भव्य मंदिर को उल्टा धरती के भीतर उतार दिया गया हो। सामान्य मंदिरों के शिखर आकाश की ओर उठते हैं, जबकि यहाँ सीढ़ियां और मंडप धरती की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं। यही कारण है कि इसे अक्सर उल्टा मंदिर भी कहा जाता है। 7 स्तरों वाली इस वाव की दीवारों पर 500 से अधिक प्रमुख और लगभग 1000 से भी अधिक छोटी बड़ी मूर्तियां उकेरी गई हैं। इनमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, अप्सराएं और भारतीय जीवन के अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं। पत्थरों पर की गई यह बारीक नक्काशी आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। रानी की वाव की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए वर्ष 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह सम्मान न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक विरासत के गौरव का प्रतीक है। और इसी तस्वीर को भारत के 100 रुपए के नोट पर भी छापा गया है, और यह बहुत कम स्मारकों को मिला ऐसा सम्मान है जो इसकी विशिष्टता को और भी बढ़ा देती है। सदियों तक सरस्वती नदी की बाढ़ और मिट्टी में दबे रहने के बावजूद यह अद्भुत संरचना सुरक्षित रही। जब इसे पुनः खोजा गया, तब दुनिया ने भारतीय वास्तुकला के इस अनमोल रत्न को फिर से देखा। रानी की वाव हमें बताती है कि भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग केवल उपयोगिता तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें सौंदर्य, आध्यात्मिकता और विज्ञान का अद्भुत मेल भी था। यह ऐसी धरोहर है जिसे देखकर हर भारतीय गर्व महसूस करता है। तो अगली बार जब आप गुजरात जाएं तो रानी की वाव को अपनी यात्रा सूची में अवश्य शामिल करें, क्योंकि यह केवल एक बावड़ी नहीं है बल्कि पत्थरों में लिखी भारत की गौरवशाली कहानी है, एक रानी और एक राजा की।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म जॉनी मेरा नाम से। और दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की दुनिया का सबसे कीमती खजाना क्या है, सोना, हीरा या पैसा? नहीं, आज का सबसे बड़ा खजाना है डेटा। आपकी तस्वीरें, बैंक अकाउंट, ईमेल, ऑफिस की फाइलें, यहां तक कि किसी देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी। और इस खजाने की रक्षाकर्ता कौन है? एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। जिस तरह पुराने समय में किलों की रक्षा के लिए सैनिक होते थे, उसी तरह आज की डिजिटल दुनिया के प्रहरी हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। इनका काम सिर्फ हैकर्स को रोकना नहीं होता है दोस्तों, बल्कि किसी भी साइबर अटैक से पहले कमजोरियों को ढूंढ कर उन्हें ठीक करना भी होता है। यानी ये डिजिटल जासूस भी हैं और सुरक्षा कवच भी। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में हर 39 सेकेंड में एक साइबर अटैक होने की बात कही जाती है। ऐसे में हर बैंक, हॉस्पिटल्स, एयरलाइन, ई कॉमर्स कंपनी, सरकारी विभाग और यहां तक कि सोशल मीडिया कंपनीज को भी साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। अगर आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, लॉजिकल थिंकिंग और पहेलियां सुलझाना पसंद है तो ये करियर आपके लिए है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए करियर विकल्पों में से एक है। अच्छे स्किल्स होने पर शानदार सैलरी, वर्क फ्रॉम होम के अवसर और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने का मौका भी मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में लोग आपको सिर्फ आईटी प्रोफेशनल नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया का रक्षक भी कहें, तो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एक ऐसा करियर है जिस पर आज से ही नजर डालना शुरू कीजिए। याद रखिए, भविष्य उसी का है जो सिर्फ तकनीक का उपयोग करना नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा करना भी जानता है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण को, फिल्म थी बड़े दिल वाले। और कभी कभी दुनिया हमें हमारे कपड़ों से परखने लगती है, कौन क्या पहनता है, कैसे दिखती है, उसका रंग कैसा है, वो किस पृष्ठभूमि से आता है। लेकिन सच तो ये है कि इंसान की असली पहचान उसके सपनों, उसकी मेहनत और उसके व्यक्तित्व से बनती है। जरा सोचिए, एक साधारण सी साड़ी जो ना बहुत महंगी थी, ना उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे, ना किसी फैशन डिजाइनर की कल्पना थी, फिर भी वो आज वो साड़ी दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में, वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में सहेज कर रखी गई। आखिर क्यों? क्योंकि उस साड़ी को पहना था डॉक्टर नंदिनी हरिनाथ ने, इसरो के ऐतिहासिक मंगलयान मिशन के डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर ने, उसी दिन जब भारत का मंगलयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर मंगल की ओर बढ़ा था, डॉक्टर नंदिनी ने वही साड़ी पहनी थी। दुनिया उन्हें भारत की रॉकेट वुमन कहता है। तो जरा ठहर कर सोचिए, संग्रहालय में जगह उस साड़ी को नहीं मिली, बल्कि उस उपलब्धि को मिली, उस जुनून को मिली, उस स्त्री के साहस और प्रतिभा को मिली जिसने दुनिया को बता दिया कि सपनों का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को कभी कभी दूसरों के नजरों से आंकने लगती है, याद रखिए, आपकी त्वचा का रंग आपकी क्षमता तय नहीं करता, आपके कपड़े आपकी बुद्धिमत्ता की सीमा नहीं बताते, आपका शहर आपकी भाषा या आपका पारिवारिक परिवेश आपके भविष्य का फैसला नहीं करते हैं। आप जो पहनना चाहिए उसे गर्व से पहनिए, अपनी संस्कृति को अपनाइए, अपनी पहचान को संजोइए, लेकिन सबसे बड़ी ताकत अपने ज्ञान, अपने कर्म और अपने व्यक्तित्व को बनाइए, क्योंकि दुनिया अंततः ये याद नहीं रखती कि आपने क्या पहना था, दुनिया ये याद रखती है कि आपने क्या कर दिखाया। और हाँ, अगर कभी कोई आपको आपके पहनावे से आंकने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर बस इतना कह दीजिए कि मेरे कपड़े मेरी पसंद हैं, लेकिन मेरी पहचान मेरी मेहनत है। उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से तय होती है, और जब हौसले बुलंद हो तो आसमान भी सीमा नहीं रहता।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म घर से, और हम बात करते हैं अब हमारी परंपराओं के पीछे छिपे विज्ञान और संस्कृति की। तो केले के पत्ते पर खाते हुए आपने अक्सर देखा होगा, खुद भी खाया होगा और उसमें हम खाना पकाते भी हैं, लेकिन क्यों? भारत के कई राज्यों जैसे दक्षिण भारत, ओडिशा, बंगाल और पूर्वोत्तर में केले के पत्ते पर भोजन परोसने की परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन ये सिर्फ परंपरा नहीं है, इसके पीछे कई रोचक कारण भी हैं। जब गर्म भोजन केले के पत्ते पर परोसा जाता है तो पत्ते की प्राकृतिक परत से हल्की सी सुगंध भोजन में घुल जाती है, जिससे स्वाद और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि इडली, पातोड़ी या मछली जैसी कई चीजें केले के पत्ते में लपेट कर पकाई जाती है। और केले के पत्तों में पॉलीफेनॉल नामक एक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। माना जाता है कि गर्म भोजन के संपर्क में आने पर इनका कुछ अंश भोजन तक पहुंच जाता है। और महत्वपूर्ण बात, केले का पत्ता पूरी तरह से प्राकृतिक है, बायोडिग्रेडेबल है।

धोने की चिंता ना प्लास्टिक का कचरा यानी पर्यावरण के प्रति भी एक जिम्मेदार कदम। और शायद यही हमारी भारतीय परंपराओं की खूबसूरती है, जहां स्वाद, स्वास्थ्य और प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो अगली बार जब आपको केले के पत्ते पर भोजन करने का अवसर मिले, तो उसे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव समझिए।

जी हाँ, हम भी चले। अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले को फिल्म पड़ोसन से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम को और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का

0: पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Earlier, Prime Minister Takaichi was accorded a ceremonial welcome.

0: सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, ये समय है उस कार्यक्रम का जिसका आपके साथ हमें भी बेसब्री से रहता है इंतजार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ आपके रेडियो हम सफर सोनाली। तो करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, लेकिन ऐसे कैसे, जब तक हम आपके साथ में कुछ बात ना कर लें, ऐसे कैसे आपको बता दें कि आज की फिल्म कौन सी है। जी हाँ, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो केवल अपने प्रदर्शन के समय ही नहीं, बल्कि बरसों बाद भी उसी उत्साह के साथ याद की जाती हैं। उनके गीत सुनते ही जैसे समय पीछे लौटने लगता है और किरदार आंखों के सामने उतर आते हैं और सिनेमा घर की वही पुरानी सीटें, वही तालियां और वही रोमांच फिर से महसूस होने लगता है। आज की जो फिल्म है, आपको बस इतना बता दूं कि 1998 में ये फिल्म रिलीज हुई है और ये बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। देखिए, अब मैंने आपको हल्का सा हिंट तो दे दिया है और ना एक थीम म्यूजिक भी बजा रही हूँ। अगर आप बता दें कि आज की हमारी फिल्म कौन सी है तो क्या ही बात हो। हाँ, लेकिन देखते हैं कौन कौन हमें बता सकता है कि हमारी आज की फिल्म कौन सी है। देखिए, ये जो फिल्म है ना, ये 20 नवंबर 1998 को प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान ने। चलिए, बहुत सारी हिंट हो गई, अब मैं आपको एक गाना सुना ही देती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपने पता कर लिया ना कौन सी फिल्म है।

जी हाँ, अब आप लोगों से कोई भी बात कभी छुपी रह सकती है। भाई इतने इंटेलिजेंट श्रोता है ना हमारे, कि इन्हें आप एक क्लू दीजिए और आप यकीन मानिए वो उसी वक्त उसे पकड़ लेंगे और आपके सामने हर पहेली का जवाब एकदम दे देंगे। हाँ दोस्तों, हमारी आज की फिल्म है 1998 में रिलीज हुई फिल्म सोल्जर, और हम इसी की बात आज इस पूरे समय आपके साथ करेंगे। तो हमारे बहुत से दोस्तों ने बिल्कुल सही हमें अपने जवाब भेज दिए हैं, तो उनके नाम मैं खैर आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, अभी आप ये जो गाना सुन रहे हैं ना, ये गाना गाया है अलका याग्निक के साथ कुमार शानू ने, और हम इस फिल्म के बारे में आपको हमने बताया था कि निर्देशन किया अब्बास मस्तान ने। इस फिल्म के निर्माता थे कुमार एस तौरानी और रमेश एस तौरानी, जबकि संगीत की जो जिम्मेदारी संभाली ना वो संभाली अनु मलिक ने और गीत लिखे समीर ने। फिल्म में जो मुख्य भूमिकाएं निभाई वो थी बॉबी दोयल और प्रीति जिंटा, जबकि उनके साथ राखी, सुरेश ओबेरॉय, दिलीप ताहिल, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, शरद सक्सेना और आशीष विद्यार्थी जैसे अनुभवी कलाकार भी नजर आए। देखिए दोस्तों, हमेशा हम ना आपको कहानी भी बताते हैं इस फिल्म की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहानी के अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपके साथ हमें ये जानकारियां साझा करनी चाहिए, है ना। तो आज हम ना पूरे समय ये कोशिश करेंगे कि इस फिल्म और इसमें जो पर्दे के सामने नजर आए वो कलाकार, और इसके अलावा पर्दे के पीछे जो कलाकार नजर आए उनके बारे में भी, कलाकार ही बोलेंगे हम उन्हें भी, क्योंकि अगर वो नहीं अपनी कला का जलवा हमें दिखाते तो हमारे सामने पर्दे की इतनी रूप भली दुनिया कभी हमारे सामने कभी आती ही नहीं, है ना। तो हम उनके बारे में आपके साथ में सारी बातें साझा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए अब मैं क्यों ना बात करूं उन दोस्तों की जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो हमारे साथ हैं, देखिए, बिल्कुल है सुनील पाठक जी, और ये लिख रहे हैं एक ही फिल्म के तहत फिल्म सोल्जर की गीत और कहानी सुन रहे हैं। ये फिल्म अपने ज़माने की खूबसूरत फिल्म थी। बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं आप, और इसी खूबसूरती को आज हम अपने स्टूडियो में भी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये हैं हमारे साथ मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार कुमकुम। फिर हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, और इन्होंने भी बिल्कुल, देखिए मैं जिन जिन की भी नाम अभी आपके सामने ले रही हूँ ना हमारे दोस्तों की, इन सभी ने बिल्कुल सही हमें जानकारी दी है कि हम फिल्म सोल्जर की बात कर रहे हैं। फिर हैं ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, और लिख रही हैं सोनाली मैम जी नमस्कार। ओहो, देखिए अब यहाँ पर तो मैंने जहाँ बोला कि मैं सही लोगों के नाम ले रही हूँ, ये तो आंसर मुझे गलत मिला है। देखिए बबलू साहू जी, ये बाजीगर नहीं है, अभी मैंने आपको बता दिया, ये सोल्जर है। और अरे वाह, क्या बात है, अजीत भावसार जी ने तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी। तो देखिए

प्रमिला भावसार जी और अजीत भावसार जी, आप विरमगाम गुजरात से हमारे लिए लिख रहे हैं, आपने सब बता दिया कहाँ कहाँ शूटिंग हुई। देखिए मेरा ना थोड़ा सा आप काम आसान कर दे रहे हैं, तो देखिए वो सारी बातें मैं आपके साथ में जरूर साझा करूंगी जो अजीत भावसार जी ने हमें लिखी है। और फिर ये कौन है, ये है जी, ये नोहर राजस्थान से है, नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार और हिमांशु सुथार, इन्होंने भी बिल्कुल सही लिखा है कि ये

सोल्जर है। और अच्छा वो लिखने की मेरी शादी फरवरी 1999 में हुई थी, उसे उस समय सोल्जर फिल्म और इसके गीत बहुत सुपरहिट थे। तो अच्छा, तो आपको देखिए वो पुराने दिन भी याद आ गए होंगे, है ना? तो बहुत अच्छी बात है, आज हमारी इस फिल्म के माध्यम से आप उन सारे दिनों को दोबारा जी लीजिए। और ये है अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मज़र अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं, तो अभी हम बातें और भी करेंगे। इसके पहले ना इस फिल्म का एक और गाना सुनते हैं, जो सुनकर के आप पक्का पक्का बल्ले बल्ले हो जाएंगे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की आवाज में ये गीत। और देखिए हुआ ना मन मिजाज से बल्ले बल्ले। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं फिल्म सोल्जर की। और देखिए इस फिल्म में ना गाने बहुत सारे हैं, कम से कम तकरीबन 7 गाने हैं इसमें, और हम सब गाने आपके साथ में साझा करना चाहते हैं और आपकी बातें भी शुमार करना चाहते हैं। तो हमारे साथ देखिए कौन जुड़े हैं। हमारे साथ संजय ढिंगनिया है, ये है बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपा ढिंगिया। और फिर हमारे साथ हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, और ये हैं गांव हीरा वाली, फजिलका पंजाब से। फिर हमारे साथ हैं ये कौन है, हाँ गांव जाओ खुद राजस्थान से, शंभुदयाल खट्टक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खट्टक। और इन्हें भी हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। और फिर ये हैं आदाब व नमस्कार बहन जी, यह है फ्रेंड्स रेडियो ग्रुप छोटी बलिया मुंबई करजत से, कौन है, अहमद भाई फुलवाले, नूर आयशा अहमद फुलवाले, इमरान अहमद फुलवाले, जूही इकबाल, सदफ आरजू, इकबाल अहमद फुलवाले और समस्त फुलवाले फैमिली, शुक्रिया। गांव नलोई तहसील

भवानी मंडी जिला हिसार से हैं सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक व वेदांश, और इन्हें भी अच्छा लग रहा है प्रोग्राम सोल्जर। शुक्रिया, फिल्म आपने सही पहचानी है। फिर ये हैं, आज हमें फिल्म सोल्जर के गीत और की जानकारी दे रही हैं, ये हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बबलू और डब्लू। और फिर हमारे साथ हैं बबलू और डब्बू, माफ़ कीजिएगा, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, ये हैं छत्तीसगढ़ पलारी से। फिर हैं इसहाक मोहम्मद, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और इनके परिवार के

पी सदस्य फिर है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, शुक्रिया। ये हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और समस्त विश्वकर्मा परिवार। और ये कौन है? ये है राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, इंदिरानगर भवरपुर से। और चलिए धर्मेंद्र छिपा जी का चिरपरिचित ईमेल हमारे पास आ चुका है। पूजा परिवार है इनके साथ और कपिल छिपा जी भी हैं। शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आपका नॉलेज से भरपूर, पूरे इन्फॉर्मेटिव होता है आपका ईमेल। फिर ये हैं ग्राम नागरकोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, आपका मैं ले चुकी हूँ। जी जी, आपने उसे करेक्ट कर दिया फिल्म को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, हम बात कर रहे थे फिल्म सोल्जर की और उसकी बातों की। तो आइए अब मैं आपके साथ में जो गाना लेकर आ रही हूँ दूसरा, उसके पहले आपको बता दूं कि हिंदी सिनेमा के लिए बदलाव का समय था कौन सा, 90 का समय। एक और रोमांटिक फिल्मों का जादू था तो दूसरी ओर सस्पेंस और एक्शन पर आधारित फिल्में भी दर्शकों को आकर्षित कर रही थी। बाजीगर और खिलाड़ी जैसी सफल फिल्में देने के बाद अब्बास मस्तान एक बार फिर एक ऐसा विषय लेकर आए थे जिसमें प्रेम भी था, परिवार भी, विश्वासघात भी और रहस्य भी। यही संतुलन सोल्जर की सबसे बड़ी ताकत बना था। और हर मोड़ पर कहानी में एक नया सवाल खड़ा होता था और अंत तक दर्शक अनुमान लगाने पर मजबूर रहते थे कि आखिर इसकी एंडिंग क्या है। हाँ, तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपका एंड बोल करके यहाँ पे मजाक किरकिरा नहीं करूँगी, आप ज़रूर ये फिल्म देखें। और इसकी सबसे दिलचस्प बात आपको पता क्या है कि इसकी प्रेरणा पंजाब की एक वास्तविक घटना से ली गई थी जिसे बाद में पटकथा का रूप दिया गया था। तो चलिए ये तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं एक और दूसरे गाने की।

आप हमारा ले लेते हैं आपकी बातों से। और इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें आप लोग कैसे लिख देते हैं भाई, हमें तो विश्वास ही नहीं होता। और इतनी सारी जानकारियां आपके पास में कहां से आती है, अच्छा बताइए तो। देखिए ये हमारे सरकार सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और लिख रहे हैं कि इन्हें आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ हो, शुक्रिया। और इन्हें आज की फिल्म के बारे में भी पता चल गया है और सोल्जर की बात लिखी है, शुक्रिया बहुत सारी, हमारी तरफ से भी आपको बधाई। फिर ये है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। और फिर है पहाड़गंज मुल्तानी थाना से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। और फिर है हमारे साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से पेश करता आदरणीय जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, शुक्रिया। तो ये हमें कौन प्यार भरा नमस्कार भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। फिर है भवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, गोविंदा, अक्षय कुमार देवांगन। और ये है हमारे साथ हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से। फिर है हमारे साथ पीएस नवकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, यह है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। फिर है मलकापुर से नारायण इंगली, सोपान तायड़े, आशीष मुरियेकर, और इन्हें भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है उसके लिए धन्यवाद। ये कौन है, ये हैं बसंत कुमार सिन्हा जी हैं। और ये देखिए ये फिल्म ना एक ही फिल्म से है, तो इसमें मैं तो आपको आज सोल्जर के गाने सुनाऊंगी, तो आप कृपा करके आज फरमाइशी, ये फरमाइशी वाला प्रोग्राम नहीं है, तो आप फरमाइशी के लिए हमारा सुबह 10:10 पे प्रोग्राम होता है, उसमें आप ज़रूर अपनी फरमाइश भेजिएगा। और ये हमारे साथ और कौन है, ये हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ठिंगिया, नमन ठिंगिया, अपार ठिंगिया, शुक्रिया। और हम अभी बात कर रहे हैं अगेन सोल्जर की ही, तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में ना प्रीति जिंटा और बॉबी देओल दोनों मुख्य किरदारों में थे। बरसात और गुप्त जैसी फिल्मों के बाद सोल्जर ने बॉबी देओल को एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर मजबूत सफलता दिलाई। और आज भी बॉबी देओल के यादगार किरदारों की बात होती है तो सोल्जर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और रही ये बात प्रीति जिंटा की, तो ये फिल्म उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। और आपको बता दें सोल्जर उनकी पहली साइन की हुई फिल्म थी, लेकिन रिलीज पहले कौन सी हुई थी, मणिरत्नम की दिल से। इसके बावजूद मुख्य अभिनेत्री के रूप में सोल्जर ने उन्हें घर घर तक पहचान दिलाई। उनकी वो प्यारी सी मुस्कान, आत्मविश्वास और स्वाभाविक अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसी वर्ष जब दिल से और सोल्जर में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री पुरस्कार भी मिला था। और रही बात, देखिए किसी भी फिल्म का जो संगीत होता है वो उसकी आत्मा होती है ना, तो इस फिल्म की आत्मा थी अनु मलिक का संगीत। अनु मलिक ने इस फिल्म में रोमांस, लोकधुन और आधुनिक संगीत का एक ऐसा संगम रचा कि पूरा संगीत एल्बम वर्ष 1998 के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बमों में शामिल हुआ। गाने हैं जैसे सोल्जर सोल्जर, तेरा रंग बल्ले बल्ले, महफिल में बार बार, हम तो दिल चाहे तुम्हारा, और मेरे ख्वाबों में जो आए, जैसे गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस समय थे। गीतकार समीर ने बेहद सरल लेकिन दिल में उतर जाने वाले बोल लिखे, और कुमार सानू, अलका याग्निक, सोनू निगम, जसपिंदर नरूला और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाजों से इन गानों को यादगार बनाया।

0: सोनू निगम को आप सुन रहे हैं और फिल्म है सुलझे। आपको बस चलते चलते इतना बता दूं कि इस फिल्म की जो लोकेशन थी वो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों ने सोल्जर को एक बहुत ही अलग सी एक सनिक खूबसूरती दी। और इस समय उस समय विदेशी लोकेशन पर इतनी व्यापक शूटिंग बहुत आम बात नहीं थी, तो बस दर्शकों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और 1998 में ये फिल्म बनी थी महज 8.5 करोड़ रुपये में, लेकिन इसने 39 करोड़ रुपये का कारोबार किया और ये उस समय की सफल फिल्मों में शामिल रही। पुरस्कारों की बात करें तो 44th जी हाँ फिल्मफेयर पुरस्कारों में सोल्जर को 5 श्रेणियों में नामांकन मिला। फिल्म ने 2 पुरस्कार अपने नाम किए, प्रीति जिंटा को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री और दिवंगत अकबर बख्शी को सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये था हमारे और आपके साथ आज हमने बात की फिल्म सोल्जर की। समय की कमी की वजह से बहुत से गाने आपको और भी नहीं सुना पाए, इसके लिए हम आपसे सच में माफ़ी चाहेंगे। बस आपको बता दूँ कि आपका साथ हमारे लिए हमेशा बहुत मायने रखता है, तो आपके नाम आपको बता देती हूँ। ये हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। फिर हैं हमारे साथ कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत राहुल और ये हैं गुरशब्द सिंह राहुल। फिर हमारे साथ हैं और भी हमारे दोस्त हैं, ये हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी तामुरिया, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, पोता है इनका मास्टर अल कबीर। और समडील नवापारा से हैं मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राधव गुप्ता। फिर है एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की फिल्म सोल्जर में लीड वाली सफल फिल्म थी, जी हाँ ये हमें लिख रहे हैं डीबी राणा नेहरू विहार से। और हमारे साथ हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और ये कौन है, बसंत कुमार सिन्हा जी लिख रहे हैं, श्रीमती रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी गुप्ता और इन्हें भी ये दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया। फिर ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। ये सफ़र आपने तय किया आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली के साथ। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले पंजाबी में फिर उर्दू में।
1: कुछ और गीता दिनाल।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते जापान दे प्रधानमंत्री सानेदा कईची दरमियान सलाना शिखर सम्मेलन पत्री कलबात नवी दिल्ली विच जारी, कई समझौतियां दे दस्तखत होने दी उम्मीद। केंद्रीय मंत्री भूपिंदर यादव का कहना है कि सरकार विकास नूं स्थिरता नाल संतुलित करन वालियां नीतियां राहीं चुगिरदा सुरक्षा नूं यकीनी बना रही है। सलाना श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सख्त सुरक्षा दरमियान 4,822 श्रद्धालुओं के पहले जत्थे नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। बेंगलुरू दक्षिणी तालुक विच एक चट्टान डिगण नाल 7 प्रवासी मजदूरां दी मौत, कई होर जख्मी ते पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच मानसून दी छेती आमद नाल तापमान विच भारी गिरावट, 7 जुलाई तक तीनों थावां ते भारी मीह पैण दा येलो अलर्ट जारी। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली विच अपने जापानी हमरुतबा साने ताकाइची नाल सलाना शिखर सम्मेलन पत्री गलबात कर रहे ने। इस शिखर सम्मेलन दोवां धिरां नूं समुच्चे दवल्ले सहयोग की समीक्षा करन अते इन्हां नूं मजबूत बनाउण दे नाल नाल आपसी हितां दे खेतरी ते आलमी मुद्दयां ते विचार वटांदरा करन दा मौका प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ते प्रधानमंत्री ताकाइची विचकार गलबात तों बाद कई समझौतियां दा वटांदरा होण दी भी उम्मीद ए। अज पहलां राष्ट्रपति भवन विखे प्रधानमंत्री ताकाइची दा रस्मी स्वागत कीता गया। इस मौके ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद सन। जापानी प्रधानमंत्री

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब सनाई तकाइची से सालाना सरबरा बातचीत की है। भारत और जापान ने मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें इक्तिसादी, सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फरहमी, अद्वियात और एआई के शोबे शामिल हैं। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज़ की एक मरतबा फिर हिमायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है। जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली में फैल गया है, यह शुमाली और मगरबी रियासतों की जानिब मजीद आगे बढ़ रहा है। और फीफा आलमी कप में अमरीका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। बेल्जियम सेनेगल को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। भारत और जापान ने आज दवासाजी, मसनू जहानत, एआई, इक्तसादियात और तवानाई की सिक्योरिटी समेत कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान के वजीर आजम सनाई ताकाइची के साथ सालाना छोटी मीटिंग की। इस मौके पर फरीकैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन और इश्तराक को मुस्तहकम करने पर बातचीत की और उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आज के दौर में भरोसा और एतमाद सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकत

0: तारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत और जापान का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में होता है और दोनों मुल्क आज़ादाना और खुले भारत बहरुल काहिल को तरजीह देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्क इक्तसादी और तवानाई की सिक्योरिटी की अहमियत को बखूबी समझते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में साझेदारी भारत और जापान के दरमियान तआवुन का सबसे ज्यादा अहम सुतून होगा।
1: कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: इससे कबल आज जापान के वज़ीर आज़म ताकायची राष्ट्रपति भवन के अहाते में रस्मी इस्तकबालिया दिया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। जापान के वज़ीर आज़म भारत के 3 रोज़ा दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची हैं। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा है। वजारत खारजा ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकत दारी को मजीद आगे ले जाने के सिलसिले में एक अहम कदम है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि भारत और जापान के ताल्लुकात मुसलसल आला सतह के सियासी राबतों पर मबनी हैं। अभी हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापान के वज़ीर आज़म से बातचीत की थी। गुज़श्ता बरस नवंबर में जोहान्सबर्ग में G20 समिट के मौके पर भी दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी। बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के बारे में एक जामे कन्वेंशन बनाने की भारत की तवील अरसे से चली आ रही तजवीज़ की अक़वामी मुत्तहिदा जनरल असेंबली में एक बार फिर हिमायत की गई है। दहशतगर्दी से निपटने की हिकमत अमली से मुतालिक अक़वामी मुत्तहिदा की नवी जायज़ा मीटिंग के दौरान भारत की तजवीज़ को 140 मुल्कों की हिमायत से मंजूर किया गया, जिसमें मेंबर मुल्कों पर जोर दिया गया है कि कन्वेंशन को कतई शक्ल देने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। कन्वेंशन की तजवीज़ भारत ने 30 साल पहले पेश की थी। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि कानूनी खदुखाल पर आलमी सतह पर इत्तेफाक राय न होने की वजह से दुनिया में दहशतगर्दी की रोकथाम की कोशिशें कमज़ोर हुई हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निपटते वक्त दोहरा मैार नहीं अपनाया जाना चाहिए। भारत ने इस सिलसिले में अपने पुख्ता मौक़िफ़ को दोहराया है कि किसी भी सूरत हाल में दहशतगर्दी को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता और इस लानत को ख़त्म करने के लिए उसने जामे आलमी कार्रवाई पर जोर दिया है। अक़वामे मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक आलमी हिकमत अमली के नवे जायजे को इख्तियार किए जाने के दौरान अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करते हुए UN में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि दहशतगर्द होता है और इस बात पर जोर दिया कि झूठे जवाज या सियासी मसलहत पसंदी की आड़ में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें कमजोर नहीं हो सकती।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बुनियादी कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोज़ा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू होगी, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात के कुछ मजीद हिस्सों, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ गया है। इसी दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से लोगों को राहत मिली है और रियासत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई है। मानसून के रियासत में पहुंचने के बाद ऐसा हुआ है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: जनूब मगरबी मानसून बाजाब्ता तौर पर मंगल को उत्तर प्रदेश पहुंच गया और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता

0: 24 घंटे में औसत से शदीद बारिश दर्ज की गई, जिससे गर्मी के तवील सिलसिले से लोगों को राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत शदीद बारिश हुई, जिससे कुछ इलाकों में मामूलात जिंदगी मुतासर हुए, ताहम दिन का दर्ज हरारत नीचे आ गया। किसानों के लिए बारिश एक बड़ी राहत साबित हुई है, क्योंकि धान की बुआई मुकर्रर वक्त से पहले ही पीछे चल रही है। IMD ने आज कई अजला में शदीद बारिश की पेशगोई की है और कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने के लिए मौसम साजगार है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। ज़राए ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची में लोक भवन में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जाम नजरसानी से मुतालिक फॉर्म को भरने और दस्तखत करने के बाद मुतालिका BLO के सुपुर्द किया। इस मौके पर आला चुनाव अफसर के रवि कुमार, रांची के जिला चुनाव अफसर मंजुनाथ भजंतरी और दूसरे चुनाव अहलकार भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ने समाजी सिक्योरिटी 2020 पर कोर्ट के निफाज के हिस्से के तौर पर EPF स्कीम 1952 की जगह मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड EPF स्कीम 2026 को नोटिफाई किया है। नई स्कीम के तहत EPF की लाजमी हिस्सेदारी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। फीफा आलमी कप में नॉकआउट मरहले में एक्स्ट्रा टाइम के बाद शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए बेल्जियम सेनेगल को 2-3 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। दूसरी जानिब मुआविन मेजबान अमेरिका ने 2002 के बाद नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की। उसने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराया और प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब सनाई ताकाइची से सालाना सरबराह बातचीत की है। भारत और जापान ने मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें इक्तिसादी, सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फरहमी, अद्वियात और AI के शोबे शामिल हैं। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असम्बली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज़ की एक मरतबा फिर हिमायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है। जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली में फैल गया है। यह शुमाली और मगरबी रियासतों की जानिब मजीद आगे बढ़ रहा है। और फीफा आलमी कप में अमेरिका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Shri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enters round of 16 in extra time victory over Senegal. India-Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time, and the India-Japan

0: rainfall at isolated places. In Mumbai, heavy showers inundated low-lying areas, slowed traffic and disrupted suburban train services on some routes. The Pavai Lake has started overflowing following continuous rainfall. The University of Mumbai has cancelled examination schedule for today for colleges in Palghar district and under the Panvel Municipal Corporation. Schools in Palghar and in Raigad, some talukas including Alibag, Panvel, Uran, Srivardhan, Masla, Tala and Polatpur have also remained closed today as a precautionary measure. Fishermen have been advised not to venture into the sea. Nivedita, AIR News, Mumbai.
1: A powerful storm swept across Romania's capital Bucharest and 20 counties yesterday, leaving one person dead and causing widespread damage. Emergency services said nearly 2,000 calls for assistance were received in Bucharest alone, where several metro stations were flooded. The storm also affected around 60 towns and villages outside the capital, damaging dozens of homes and vehicles. In Ukraine, 13 people were killed and dozens of others injured after Russian drones and missiles hit residential buildings in Kiev as part of a broader wave of Russian overnight attacks. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002. This morning, they defeated Bosnia-Herzegovina 2-0 in the round of 32 to advance into the round of 16, where they will take on Belgium. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 402 points at 77,325, while the Nifty advanced 129 points to 24,135 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for Comprehensive Convention on International Terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also entered round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्प

0: परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज

0: करता था। विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मानसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
3: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण

0: निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये हुए पूरे 18 सेकंड।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का, और ये जो समय है ये समय है एक ऐसे कार्यक्रम का जिसका नाम है एक ही कलाकार। तो आज के जो कलाकार हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, बस एक गाने की झलक आपके सामने रख रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कौन से हमारे आज के कलाकार हैं।

जी, तो आपने अनुमान लगाया हमारे आज के कलाकार कौन है? पहला जो जवाब हमारी जहन में आता है वो किसका होता है? अनिल कपूर। नहीं जी, जैकी श्रॉफ बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कौन होगा? देखिए ना, अब मैं आपको बताती हूँ कौन है हमारे आज के कलाकार। और बताऊँ आपको, पहली जो हमारे पास में ईमेल आई है वो भी इसी जवाब के साथ आई है। जी हाँ, वो है हमारे साथ में प्रकाश वर्मा जी, लिख रहे हैं कि आज के कलाकार है अनिल कपूर। नहीं प्रकाश जी, मैं आपको बता रही हूँ आज के हमारे कलाकार कौन है। तो देखिए, हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही बरसों पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वे आवाज़ें केवल गीत नहीं गाती बल्कि एक पूरे दौर की धड़कन बन जाती हैं। ऐसी ही एक दमदार, बुलंद और दिल छूने वाली आवाज़ किसकी थी? देखिए, वो आवाज़ थी मोहम्मद अजीज की। तो आज उनकी जयंती के अवसर पर हम याद करेंगे उस फनकार को जिसने अपने शुरू से 80 और 90 के दशक के संगीत को नई ऊंचाइयां दी। तो अब आप समझ गए हमारे आज के कलाकार कौन है? जी हाँ, आज के कलाकार हैं मोहम्मद अजीज। और आज का ये जो सफ़र आप तय करेंगे, वो आप तय करेंगे मेरे साथ, यानी आपके रेडियो हम सफ़र सोनाली के साथ।

0: ये गाना सुनते ही बस हमारे सामने उस शख्स की छवि उभर जाती है जिसका नाम था मोहम्मद अजीज। इनका जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में हुआ। उनका पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा था। महान गायक मोहम्मद रफी उनके आदर्श थे और शायद यही कारण था कि उनकी गायकी में रफी साहब की मिठास और अपनी अलग बुलंद आवाज का अनोखा संगम सुनाई देता है। दोस्तों, यहाँ पर ना मैं आपको उनके एक उस गीत को याद दिलाना चाहती हूँ जो उन्होंने अपने आदर्श, अपने आइडल, जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी की याद में गाया था। और वो जो गाना था वो बकायदा मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में ही था। तो वो गाने की झलक मैं आपको यहाँ पर सुना रही हूँ। फिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके भी मन में उनके कौन कौन से गानों के लेकर के क्या क्या यादें हैं, तो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं फिल्म क्रोध का ये गाना।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

जी हाँ, तो इस गाने को आपने सुना और ये उन्होंने अपने आदर्श मोहम्मद रफ़ी के लिए गाया था। और हमारे आज के कलाकार मोहम्मद अजीज़ के बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने ना कोलकाता में कई वर्षों तक मंच पर गाना गाया। बंगाली फिल्मों में भी उन्हें अवसर मिले, लेकिन हर कलाकार की तरह उनका सपना भी मुंबई तक पहुँचने का था। संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन प्रतिभा अपना रास्ता खुद बना लेती है। मुंबई आने के बाद ना मोहम्मद

अजीज की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। संगीतकारों ने उनकी आवाज की ताकत को पहचाना, लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई वह थी 1985 की सुपरहिट फिल्म मर्द। और गाना कौन सा था बताइए? जी हाँ, यही वाला।

देखिए ये जो मर्द टांगे वाला है ये हमारे आज के कलाकार हैं मोहम्मद अजीज और आप लोगों ने कितनी खूबसूरत बातें इनके लिए लिखी हैं तो वो आपके साथ जरूर साझा करूंगी। देखिए ये लिखते हैं प्रेम सागर शुभलता रोहित सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद से वी विश हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद अजीज वी आर एंजॉइंग द प्रोग्राम थैंक यू सो मच। और ये लिख रहे हैं नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु फिल्म अच्छा नहीं देखिए सर ये कार्यक्रम हम आपको फिर बता दें फरमाइशी नहीं है इसमें हम कलाकारों की बात करेंगे और आज के हमारे कलाकार हैं मोहम्मद अजीज। फिर हमारे साथ हैं और भी हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं आज के कलाकार हैं मोहम्मद अजीज और इनकी जानकारी और गीत अच्छे लग रहे हैं। ये कौन लिख रहा है विरमगाम जंक्शन से अजित कुमार भावसर प्रमीला बेन भावसर। फिर है हमारे साथ ये है ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल जय हिंद पाल दीक्षा पाल प्रतीक्षा पाल विमलेश पाल दिव्यांश बघेल और परिवार। और हमारे साथ हमारे दूसरे दोस्त जुड़े हैं ये हैं चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद लहरे कालिंदिरी लहरे। और ये है हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से और इन्हें बिल्कुल समझ में आ गया है कि सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद अजीज जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है। और ये लिख रहे हैं तुलसी मस्कीन जी गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से इनके साथ हैं वीना मस्कीन चैतन्य मस्कीन मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशु रिधान खुराना और इन्हें मोहम्मद अजीज जी के जन्मदिन पर उनके गाए गीत और जानकारी अच्छी लग रही है लवली सॉन्ग से आगाज आपके आ जाने से। जी हाँ देखिए वो गाना तो इनका बहुत ही बेहतरीन गाना है। और ये और हमारे साथ कौन है संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है शुक्रिया। हरजिंदर सिंह छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता गांव नधाना पंजाब से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद अजीज साहब की तो 80 का जो दशक था वो हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर माना जाता है। एक और जहाँ एक और किशोर कुमार का जादू था तो दूसरी ओर नई पीढ़ी के गायक अपनी पहचान बना रहे थे। इन्हीं के बीच मोहम्मद अजीज ने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कल्याण जी आनंद जी पप्पी लाहिड़ी अनु मलिक आनंद मिलिंद जैसे लगभग सभी बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन मिथुन चक्रवर्ती अनिल कपूर सनी देओल हो या गोविंदा हर बड़े अभिनेता पर इनकी आवाज़ खूब जची। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे सिर्फ गीत नहीं गाते थे वे पर्दे पर दिख रहे किरदार की आवाज़ बन जाते थे। और एक ऐसा ही किरदार था किसका खुदा गवाह में किसका अमिताभ बच्चन का। तो आइए हम सुनते हैं फिल्म खुदा गवाह का ये गीत।

जो गाने आपको पसंद आ रहे हैं यकीन मानिए वो भी हमने बहुत दिल से चुने हैं हमारे आज के कलाकार के गाने, क्योंकि उनकी गायकी की जो बात है ना वो उनकी अलग अलग गानों में आपको नजर आएगी। ये जो गाना आप सुन रहे थे इसमें उनका साथ दिया था कविता कृष्णमूर्ति ने। और देखिए हमारे साथ ना हमारे बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, खूब प्यारी प्यारी बातें लिख रहे हैं। तो देखिए फिल्म खुदा गवाह का जो गाना है इसके बारे में लिख रहे हैं ज्योति मक्कड़, संदीप मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से। फिर हमारे साथ ये हैं हमारे दोस्त, जी हाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बढ़िया गाने हैं, शुक्रिया। मोहम्मद अजीज को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं राधा कृष्ण, नवल किशोर, शुभलता, मधु, प्रेम सागर, और ये है खजाना गीत अमृतसर से। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। फिर हमारे साथ हमारे दूसरे दोस्त हैं देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया और पोता है इनका मास्टर अल कबीर। प्रस्तुतकर्ता सोनाली जी को सप्रेम नमस्कार करते हैं, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, शुक्रिया शुक्रिया। और ये लिख रहे हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डांडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से। फिर हमारे साथ ही संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और इन्हें भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। आप हमारे संग बागपत उत्तर प्रदेश से हैं। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी सोनीपत से, और ये भी मोहम्मद अजीज साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। दीदी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, भाई आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये लिख रहे हैं मालहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, और इसके साथ है हमारे साथ पी एस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, मलकापुर से है नारायण इंगली, सोपान ताड़ी, आशीष मुरहेकर, और इन्हें मोहम्मद अजीज का कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। फिर है तुलसी मस्कीन जी, लिख रहे हैं होस्ट मैडम सोनाली जी गुड आफ्टरनून, आज के एक ही कलाकार में मोहम्मद अजीज के बारे में अच्छी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, पेशकश सुपर, शुक्रिया। ये है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चंडीगढ़ से है राहुल खुराना, रविता खुराना, केशु खुराना। तो प्रकाश वर्मा जी हैं, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, सभी हमारे साथ जुड़े हैं। और देखिए हमारे साथ कौन जुड़ा है, ये है जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ बिल्कुल आप जुड़े हुए हैं, आप कहाँ छूटेंगे हमसे। और ये लिख रहे हैं कौन, ये हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह,

अविराज सिंह और पोत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। फिर हमारे साथ कौन जुड़ा है, ये है इसहाक मोहम्मद साहब। और आज के हम सफ़र में हम भी हैं आपके हम सफ़र, बिल्कुल आप भी हमारे हम सफ़र हैं। तो ये हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। देखिए आप सभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल मोहन जी हैं, उषा मोहन टिलनायक, और इन्हें भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अज़ीज़ साहब की। अब देखिए मोहम्मद अज़ीज़ की गायकी की एक और विशेषता थी उनके ऊंचे सुर पर सहज पकड़। चाहे देशभक्ति का गीत हो या रोमांटिक धुनों, उत्सव का माहौल हो, उनकी आवाज़ हर रंग में ढल जाती थी। यही कारण है कि उनके गाए गीत आज भी श्रोताओं की पहली पसंद है। तो अब मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ फिल्म आवारगी का एक गीत, जिसमें इनका साथ दिया है लता मंगेशकर ने।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं गाना फिल्म आवारगी से, और इसमें इनका साथ दिया लता मंगेशकर ने, और हमारे साथ आप लोग दे रहे हैं लगातार। कौन है हमारे साथ हुए हैं? गांव फिरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, और इन्हें प्रोग्राम में जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं, धन्यवाद। फिर कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रोग्राम आपने पेश किया, बेहतरीन बातें बताई। देखिए धर्मेंद्र जी, यहाँ पर आज मैं बाजी मार गई ना, आज आपने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन थैंक यू, आपको प्रोग्राम अच्छा लगा इसके लिए। आप हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, और हमारे साथ हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, और फिर हमारे साथ कौन है? जी हाँ, ये मोहम्मद अजीज साहब के जी के सभी सॉन्ग सिलेक्शन जबरदस्त, लाजवाब है, आपकी आवाज़ अच्छी है, शुक्रिया। ये कौन लिख रहा है? अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन जाफर, सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा, चानेसर गोट कराची से, शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो देखिए, अब हम कार्यक्रम में उस जगह पर आ गए हैं कि अब हम आपके साथ और ज़्यादा बातें नहीं साझा कर पाएंगे, बस लेकिन चलते चलते ना मैं आपको इतना बता दूँ कि इस कलाकार को हमने 4 दिसंबर 2018 को खो दिया। मोहम्मद अजीज दुनिया से विदा हो गए, लेकिन कलाकार कभी भी विदा नहीं होते, हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। और बस आपको इतना बता दूं, चलते चलते उनके एक गाने के साथ आपको छोड़ रही हूं, और ये गाना भी बहुत अच्छा है, बहुत अलग सा है, आप ये सुनिए और आगे निकलते हैं फिर, और मुझे इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। आपकी रेडियो हम सफर सुना ली, इजाज़त चाहूंगी, नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजे हैं और रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपकी दोस्त अर्चना गोयल और अगले आधे घंटे में हम चलेंगे हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जहां हर धुन दिल में उतर जाया करती थी और हर गीत एक कहानी कहता था। आज हम आपको सुनवाएंगे 60 के दशक के कुछ ऐसे अमर गीत जिनके पीछे छिपे हैं दिलचस्प किस्से, यादगार घटनाएं और संगीत की अनसुनी बातें। कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ, आवाज लता मंगेशकर और रफी साहब की फिल्म आरजू से।

दोस्तों, ये गीत जितना मधुर है इसकी रिकॉर्डिंग भी उतनी ही खास रही। संगीतकार शंकर जयकिशन चाहते थे कि गायिका लता मंगेशकर की आवाज में रूठने की मासूमियत साफ झलके। रिकॉर्डिंग के दौरान कई बार सिर्फ एक मुस्कान का एहसास आवाज मिलाने के लिए टेक दोहराए गए। कहते हैं कि अभिनेता राजेंद्र कुमार इस गीत को अपनी पसंदीदा फिल्मी धुनों में गिना करते थे।

इस गीत की शूटिंग अपने आप में एक रोमांचक कहानी है। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन पर फिल्माया गया यह गीत उस समय तकनीकी दृष्टि से काफी चुनौतीपूर्ण था। अभिनेता राजेश खन्ना जीप में थे और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर चलती ट्रेन में। एक और रोचक तथ्य ये है कि इस गीत को किशोर कुमार की आवाज ने नई ऊंचाइयां दी और इसके बाद किशोर कुमार का दौर तेजी से आगे बढ़ा।

और अब बात करते हैं आराधना फिल्म का वो गोल्डन गीत जिसने हर युवा दिल की धड़कनों को तेज कर दिया था। जी हाँ, किशोर कुमार का गाया गीत मेरे सपनों की रानी।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत सुना और अब आपको सुनवाते हैं वो गीत जो हिंदी फिल्मी गीतों में अमर गीतों में गिना जाता है। फिल्म वो कौन थी का लग जा गले। दिलचस्प बात यह है कि संगीतकार मदन मोहन की बनाई इस धुन को शुरू में बेहद सरल समझा गया था, लेकिन जब लता मंगेशकर ने इसे अपनी आवाज़ दी तो ये गीत क्लासिक बन गया। गीतकार राजा मेहंदी अली खान ने शब्दों में बिछड़ने की पीड़ा को इतनी खूबसूरती से पिरोया कि आज भी ये गीत हर पीढ़ी को छू जाता है।

0: आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल।
1: कहीं करती होगी
0: यह आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की फिल्म है फिर कब मिलोगी।

और दोस्तों अब बात करते हैं संगीतकार ओपी नैयर की। उनकी धुनों में हमेशा एक अलग लय होती थी। फिल्म मेरे सनम का पुकारता चला हूं मैं, इस गीत में सड़क पर चलते हुए आजादी और मस्ती का एहसास पैदा करने के लिए विशेष ताल वाद्यों का इस्तेमाल किया गया था और मोहम्मद रफी की खुली आवाज ने इस गीत को सफर का स्थायी साथी बना दिया।

दोस्तों, 60 के दशक में गीतों में महिलाओं की स्वतंत्र सोच को भी दर्शाया गया, जैसे कि गाइड फिल्म का गीत आज फिर जीने की तमन्ना है। एसडी वर्मन के संगीत और शैलेंद्र के शब्दों ने इसे सिर्फ गीत नहीं बल्कि जीवन जीने का संदेश बना दिया। बताया जाता है कि अभिनेत्री वहीदा रहमान ने इस गीत की भाव भंगिमा पर विशेष मेहनत की थी, ताकि रोजी के चरित्र का आत्मविश्वास पूरी तरह उभर कर आए।

कार्यक्रम के आखिर में बात करते हैं सूरज फिल्म के उस गीत को जो आज भी उतना ही सदाबहार है जितना उस दौर में। ये गीत शादी ब्याह और खुशियों का पर्याय बन गया। मोहम्मद रफी की आवाज और शंकर जयकिशन का संगीत आज भी इसकी ताजगी बनाए हुए है।

दोस्तों, 60 का दशक सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि भावनाओं का भी स्वर्णिम दौर था। उस समय गीत बनते नहीं थे, जिए जाते थे। हर धुन में मेहनत थी, हर शब्द में एहसास और हर आवाज में सच्चाई। इसलिए 6 दशक बाद भी ये गीत हमारे दिलों में उसी तरह गूंजते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहूंगी, इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाते जाते याद रखिए, अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते, वे बस नई यादों के साथ फिर लौट आते हैं। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: हम दे रहे हैं जनाब तालीफ हैदर।
1: आज आकाशवाणी की जानिब से एक बहुत ही अहम मौजू पर एक ऐसा मुकालमा हम यहाँ कायम कर रहे हैं जो वक्त की एक अहम ज़रूरत है। आज का मौजू नई सदी में अदबी सहाफ़त। उर्दू सहाफ़त बमुराद वो तमाम अदबी जरीदे, वो तमाम अदबी रसायल या इस अहद में सोशल मीडिया पे जो अदबी मौजूआत पर बहसें होती हैं, इस मौजू में इन तमाम चीज़ों का अहाता होता है। आज की इस बहस में हमारे साथ दो बहुत ही अहम शख्सियात हैं। मैं तालीफ हैदर, हमारे साथ बहुत ही सीनियर अदीब, बड़े सहाफ़ी मुदीर जनाब हसन ज़िया साहब यहाँ मौजूद हैं, जो इन दिनों आजकल जैसे बहुत ही अजीम रसाले को देख रहे हैं, उसकी इदारत कर रहे हैं और बहुत से अदबी मौजूआत पे गुफ्तगू करते रहते हैं। ख़ुद बड़े सहाफ़ी, बड़े अदीब हैं। हमारे साथ जो दूसरी अहम शख्सियत यहाँ मौजूद हैं वो मुनव्वर हसन कमाल साहब हैं। ये भी एक बड़े सहाफ़ी, बड़े अदीब, बड़ी शख्सियत हैं, आजकल भी ऐवान उर्दू से वाबस्ता हैं, मुदीर हैं। मैं मुनव्वर साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ।
2: बहुत
1: हसन भाई आपका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ बहुत बहुत। आज की इस गुफ्तगू में सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि हसन ज़िया साहब, ये उर्दू सहाफ़त जो इस अहद में जब हम कहते हैं तो न सिर्फ ये कि उसकी तमाम खसूसियात, तमाम आसानियाँ, बल्कि तमाम मसाइल भी सामने आ जाते हैं कि आज उर्दू सहाफ़त जो है वो अदबी सहाफ़त किस तरह से, किन वजूहात की बिना पर आसान हुई और किन वजूहात की बिना पर मुश्किल हो गई है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: देखिए, ये आज का मौजू जो अदबी सहाफ़त नई सदी में, बड़ा अहम मौजू है। और जैसा कि आपने कहा कि क्या क्या नई आसानियाँ और क्या क्या दुश्वारियाँ आ गईं, ये एक बड़ी अजीब बात है कि हम अगर पिछली सदी की सहाफ़त पर नज़र डालते हैं तो उसका एक रोशन और ज़र्रीन दौर रहा है, और आज से अगर हम उसका मवाजना करें तो हम देखते हैं कि आज हालात अक्सर मुख्तलिफ हैं। अगर आप इस तरह देखें कि आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में जो शराय ख्वानदगी थी वो 18% थी, 80 की दहाई तक आते आते 30-35% रही, और आज के जो इदाद व शुमार हैं उनके मुताबिक आज हिंदुस्तान की शराय ख्वानदगी 77% है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ी है, और जो कोई भी अदबी जरीदा है उससे पढ़ने के लिए जाहिर है कि आदमी का ख्वानदा होना ज़रूरी, उसके बाद उसका पढ़ा लिखा होना, अदबी ज़ौक होना, तभी वो रिसाला पढ़ेगा। और आज इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास ख्वानदगी और तालीम का बेहद फैलाव हुआ है, बेशुमार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ नई नई खुली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि अगर एक मानों में हम देखें तो ये कह सकते हैं कि अदबी सहाफ़त बहुत से बड़े चैलेंजों का शिकार है। अगर कोई ये भी कहे कि शायद किसी मानों में जवाल पजीर है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। और उसकी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आज नई सदी है और ये समाज है, इसमें इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं, ये इंसानी रवैयों को भी तब्दील कर रही हैं, इंसान की तरजीहात को, उसकी पसंद नापसंद को और उसके पूरे तर्ज ज़िंदगी को बदल रही हैं। तो जाहिर है कि अदब या अदबी सहाफ़त या उर्दू सहाफ़त, ये तमाम चीज़ें उसी के तहत आती हैं, ये अलग से कुछ नहीं हो सकती, माशरे से अलग हम करके नहीं देख सकते। और आज पिछले अहद में हम देखते हैं तो जो दिलचस्पी लोगों की थी अदब से वो आज कम हुई है। बज़ाहिर अदब पढ़ने वाले बढ़े हैं लेकिन सही मानों में हकीकी दिलचस्पी रखने वाले कम हुए हैं।
1: ये बहुत बुनियादी बात है कि ये वक्त के साथ साथ तरक्की तो हुई है लेकिन पढ़ने वालों की दिलचस्पी जो है, मुझे लगता है कि बात बहुत आपने आम कही है कि कुछ कम हुई है। ऐसा ही मुनव्वर साहब, मुझे भी यही लगता है कि जो ज़िया साहब कह रहे हैं, एक ज़माना था जब फ़नून, शफून और ऐसे बहुत अहम रसायल निकलते थे और सौगात, उन रसायल में जो मबाहिस होते थे उन मबाहिस को बहुत संजीदगी से लिया जाता था, उन पर बहसें होती थीं, उस पर्चे में छपना जो है वो एक बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई अगर कोई पर्चे में छप गया तो महीनों उसके मज़मून का चर्चा होता था। क्या सूरत हाल है कि आजकल हमारी उर्दू सहाफ़त जो है, तो उर्दू की जो अदबी सहाफ़त है, वो वसाइल तो बहुत हैं और बहुत आसानियां पैदा हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मबाहिस खत्म होते नजर आ रहे हैं, क्या ख्याल है आपका?
3: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में ये सूरत हाल

0: है कि वक्त के साथ साथ जो तजर्बेकार सहाफ़ी थे, जहीज़ सहाफ़ी थे, वो रुख्सत हो गए, और नए सहाफ़ी जो आ रहे हैं मैदान में, नई नस्ल जो आ रही है, उनके पास मुताले का फुकदान है। वो कुछ तैयारी तो कर रहे हैं, वो अखबारात में काम कर रहे हैं, रसाइल में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस मुताले की अदबी सहाफ़त को ज़रूरत है वो उनके पास कम है या नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि नहीं है। हालांकि है, जिस सतह पे भी है, लेकिन वो कोई ना कोई सतह ऐसी है कि वो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं अदबी सहाफ़त की, वो उनसे नाआशना ही नज़र आते हैं बज़ाहिर। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि तजिया निगारों का एक मुसलसल बहरान पैदा हो गया उसकी वजह से, इसलिए कि जो चीज़ें उनके सामने आती हैं वो उस पर तजिया करने की सलाहियत उनके यहाँ नहीं पाई जाती, और अगर सलाहियत पाई भी जाती है तो वो उसके उन पहलुओं को नहीं उभार पाते जिनकी उस अदबी मैदान में ज़रूरत है। दूसरे ये कि असल में हुआ क्या है, हुआ यह है कि यहाँ शुमाली हिंद में ख़ास तौर से उर्दू मीडियम स्कूलों का फुकदान है। उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है, उर्दू मीडियम स्कूल बुनियाद है उर्दू की, और उर्दू बुनियाद फिर बनती है अदब की, और अदब फिर बुनियाद बनती है अदबी सहाफ़त की, सिलसिला या दर सिलसिला बात आगे बढ़ती है। और जब हमारे पास बुनियाद ही कमज़ोर होगी और फिर हम मामूली सतह पे उर्दू सर्टिफिकेट लेकर या उर्दू कोर्स कोई करके आगे बढ़ेंगे और अपने किसी तरह से मुलाजमत भी हासिल कर लेंगे, और मुलाजमत हासिल करना ही असल अब मौजू रह गया है, अब असल खिदमत नहीं है। जो पहले लोग थे वो अदबी खिदमत भी करते थे, उनके सामने नज़रिया यह होता था कि जो चीज़ है मैं इसमें अदबी खिदमत कर रहा हूँ, और इसको अपने तौर पर, मुमकिन तौर पर, जहाँ तक भी हो सकता है, परवान चढ़ाऊँ।
1: अदबी खिदमत से क्या मुराद है?
0: अदबी खिदमत से ये मुराद है जो अदबी ज़खायर हैं हमारे, उनको हम मंजर आम पर लाएँ और उनसे दूसरे लोग बुनियादी तौर पर इस्तिफादा करें, और जब वो उसकी सलाहियत हमारे अंदर नहीं होगी तो हम उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरियां हैं, लेकिन आप देखते होंगे लाइब्रेरियां आजकल खाली ही नज़र आती हैं। आजकल लाइब्रेरी में कहीं लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं, या जाते हैं तो सिर्फ अपने काम के लिए कि उनको इतनी तैयारी करनी है इम्तिहान की, उसके बाद ख़त्म। पहले ये होता था कि जो कॉलेजेस के अलावा भी लाइब्रेरियाँ होती थी वहाँ पर लोग जाते थे, अखबारात के ज़खायर जहाँ मौजूद हैं वहाँ पे उनका मुताला करते थे, रसाइल जहाँ मौजूद हैं उनका मुताला करते थे। अब जैसे आजकल की ही बात कीजिए आप, आजकल में तमाम फाइलें जब से ये 1942 या कब से ये है तो वहाँ मौजूद है, और लोग पहले किस कदर वहाँ आते थे और उनसे मुताला करते थे, उनसे इस्तिफादा करते थे, आज मेरे ख्याल से वो सूरत हाल नहीं है।
1: इस
0: बताएंगे
1: सूरत हाल ना होने की वजह मुनव्वर भाई या हसन भाई, मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये भी है कि बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गई हैं सारी चीज़ें, और अदबी मबाहिस से किसी नौ की बज़ाहिर कोई फ़ायदा लोगों को नज़र नहीं आता जो नई नस्ल है। हालांकि हमने ये देखा कि भाई पिछली सदी में हर जबान का अपना एक अदब होता है, हर ज़माने में अदब लिखा जाता है, आज भी दुनिया की हर जबान में अदब लिखा जा रहा है, वो पढ़ा जा रहा है, लेकिन क्या हिंदुस्तान की सतह पर उर्दू जबान व अदब को पढ़ने वाले किसी तरह की एहसास कमतरी का शिकार हैं, या कि क्या सूरत हाल है ये?
2: देखिए तालिब हैदर साहब, आपने जो ये सवाल उठाया है ये बहुत अहम सवाल है। असल बात क्या है, देखिए अगर पहले हम बुनियादी सवाल की तरफ जाएं कि अदब क्या है। अदब जो है, अदब के लिए कहा जाता है कि ये हमारे जमालियाती ज़ौक की तरबियत करता है, और उसको कहना चाहिए कि जो एस्थेटिक हमारा सेंस है उसको सेटिस्फाई करता है। और अदब में तखयल भी होता है, आला और अरफा ख्यालात भी होते हैं, और इंसानी जज्बात की तर्जुमानी भी होती है।
1: सही।
2: तो अदब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम कारोबार के तौर पर या उस तरह लें। अदब का मुताला करने के लिए जो हमारे पास जो चीज़ हमें प्राइम मोटिव हमारा होगा वो हमारा अदबी ज़ौक होगा। और आज के समाज में हम ये देख रहे हैं कि कैसी मकसदियत पैदा हो गई है। मकसदियत अच्छे सेंस में भी होती है और मकसदियत बुरे उसमें भी इस्तेमाल हो सकती है, कि जिस चीज़ का हमें कोई बराह रास्त फायदा नजर नहीं आ रहा उस चीज में हम दिलचस्पी कम ले रहे हैं। और हमने भी अपने तालिबे इल्मी के दौर में हम रिसाले, अदबी रिसाले पढ़ते थे, तो हमें उस वक्त यही होता था कि हमें कोई किसी फायदे के लिए हमने कभी नहीं 20वीं सदी या कोई रिसाला खरीदा। हम सोचते थे चलो इसमें फिक्र तौंसी का मजमून है या कन्हैया लाल कपूर का तंज है, तीरो नश्तर है, हम इसके लिए पढ़ते थे। आज कारीन की एक बड़ी तादाद और लिखने वालों की ऐसी है जो इस मकसद से लिख रहे हैं कि या तो उनकी चीज़ छप जाए, या उनको जो है, कई ऐसे अक्सर लोग हमसे रब्ता करते हैं कि हमें वो रिसाला तो मिल गया लेकिन वो जो बेगार था उसमें हमारा नहीं था वो मजमून। अब अगला देखूंगा, ये तो हमारे रख देते हैं ऐसे ही मजमून। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी तहरीर कहीं छपेगी, हमारी तस्वीर छपेगी, तब तो हमें दिलचस्पी है अदबी सहाफत से, वरना हमें अदबी सहाफत से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये चीज है कि जो बेलौ

0: होगी कि भाई ये लोग जो हैं वो एकेडमिक्स की दुनिया से अलग होकर एक खालिस जज्बे के तहत मजामीन लिख रहे हैं, क्या ख्याल है मुनव्वर साहब?
1: जी बिल्कुल, इस तरह तो होता है और बहुत से लोग कर भी रहे हैं ऐसा, अपने अपने मौजू से हटके भी लिखते हैं, मुख्तलिफ मौजूआत पर लिखते हैं, लेकिन वही सीनियर्स जो हैं वो मामला यही होता है कि उनकी सब चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं, फिर यह होता है कि वो किताबी शक्ल में भी सामने आती हैं, वो लोग उनको किताबी शक्ल में शाये करके पेश करते हैं, इसलिए कि सारे मजामीन रसाइल में चले जाएं ऐसा मुमकिन नहीं होता। अखबारात में तो खैर जा सकते हैं, अखबारात में तो छप जाती हैं चीज़ें, लेकिन रसाइल का जहाँ तक ताल्लुक है, रसाइल का एक मिजाज होता है, हर रिसाले का एक अपना मिजाज होता है, वो उसके एतबार से मजामीन उसमें शाये किए जाते हैं, उसी के एतबार से अफसाने शाये किए जाते हैं, उसी के एतबार से गज़लें शाये की जाती हैं। बाज़ रसाइल जो हैं वो सिर्फ जदीद तर्ज की गज़लें शाये करते हैं, बाज़ रसाइल जो हैं रिवायती गज़लें शाये करते हैं, बाज़ रसाइल जदीद और रिवायत दोनों को मिला के शाये करते हैं। ऐसे रसाइल की तादाद ज़्यादा है जिसमें जदीद और रिवायती दोनों तरह की गज़लें शाये होती हैं, और वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इसलिए कि उसके क़ारी दोनों तरह के मिल जाते हैं उसको, और यही सूरत हाल मज़ामीन की है। जब मजामीन का इंतखाब किया जाता है, आज सहल पसंदी बहुत ज़्यादा आ गई है नई नस्ल में, या नई नस्ल को छोड़िए जो पिछली नस्ल के भी बाज लोग हैं उनके यहाँ भी सहल पसंदी आ गई है, और वो भी कोई किताब उठाई और उस पर कोई तबसराती मजमून लिखा और ज़रा तवील मजमून हो गया तो उसको भेज दिया कि साहब ये एक मजमून हो गया है, इसको आप शाये कर दीजिए। नहीं शाये कर पाते हम लोग, मजबूरी है। रसाइल के सफ़ात भी महदूद होते हैं, उन्हीं के अंदर मजामीन समेटने हैं, अब उसी में अगर हमारे पास चार पांच सफ़े के 8-10 मजमून आ गए तो हमारे रसाइल का तो पेट भर गया, और मजामीन आए हमारे पास 20-25, तो अब जाहिर है 15 मजमून तो नहीं छप पाएंगे, 15 मजमून में भी कोई और मजमून होंगे एक दो तो अगले महीने काम आ जाएंगे, वरना वो रखे रहेंगे या उनका तकादा होगा, जैसे बताया उन्होंने किसी का तकर्रुर है, किसी की तरक्की है, किसी स्कॉलर की PhD जमा हो रही है उनको करना है, अब उसमें सूरत हाल ये होती है कि उनको बताया जाए।
0: ये मुनव्वर भाई बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन ये सब सूरत हाल को बदला कैसे जाए, मतलब हिंदुस्तान की सतह पर ये तो मसाइल हैं, लेकिन मसाइल को कैसे बदला जाए, मतलब हमारे सामने हमारे पेशे नज़र आपका जो तजर्बा है, हमारे पेशे नज़र जो मौजूआत या जो रसाइल हैं कि भई ये रसाइल थे और इन रसाइल को हमने जो है वो मतलब ऐसा जाना कि भई इसी तरह से रसाइल होना चाहिए, तो अब सूरत हाल को तब्दील करके रसाइल की दुनिया में इनकलाब कैसे लाया जाए?
2: आप सही कह रहे हैं कि उसमें तब्दीली की बात भी हमें सोचनी चाहिए, हम यही नहीं सोच सकते सिर्फ के जो मसाइल हैं हम उनको गिनवाने लगें। बात यह है कि अगर हम लोग अदब में सच्ची दिलचस्पी लें और जो रसाइल हैं उनको खरीदें, उनकी सरपरस्ती करें, उन्हें पढ़ें, और उनमें अगर हमें कोई कमी लगती है तो उसको पॉइंट आउट करना भी ज़रूरी है कि भाई आप जो है मुदीर को लिख सकते हैं कि इसमें आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगें, और उसमें अगर हम लोग दिलचस्पी लेंगे और रिसाइल से पहले तो अदब में दिलचस्पी लेंगे अगर हम, तो मैं समझता हूँ कि रिसाइल में एक नई जान पड़ सकती है। वैसे तो आप देख रहे हैं कि नई सदी जो है इसमें पूरा प्रिंट मीडिया ही एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, क्योंकि लोगों का ज्यादातर वक्त जो है डिजिटल मीडिया में मोबाइल में सर्फ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ डिजिटल रिसाइल भी निकल रहे हैं, अदबी रिसाइल अगर हम देखें, और जो सरकारी रिसाइल हैं निजी भी हैं, ओवरऑल मेयार में मैं समझता हूँ कि कमी जरूर आई, लेकिन अगर हम लोग दिलचस्पी लें अपने जबान में अपने अदब में और रिसाइल को खरीद कर पढ़ेंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं और नई सदी में हम एक अच्छी अदबी सहाफत जो है पेश कर सकते हैं।
0: खरीद के पढ़े जाएं, इसकी पॉलिसी कैसे बनेगी हसन भाई?
1: हाँ सर, खरीद के पढ़ना पॉलिसी क्या है, कुछ बहुत ज्यादा पैसे तो खर्च होते नहीं है, बस अपने दिमाग को इस तरफ लगाने की जरूरत है।
0: क्या कारईन जो इतने मजामीन भेज रहे हैं, क्या उर्दू के रसायल जो मुदीर हैं या जो इदारे रसाले निकाल रहे हैं, क्या उनको मालूम है कि उनके रसायल का कारी कहाँ है और उसको किस तरह से पकड़ना है? क्या ये पूरी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में तो कहीं कोई कमी नहीं है जिससे कारी तक हमारे रसायल पहुँच ही नहीं रहे? क्या इस तरह की कोई कमी महसूस करते हैं आप?
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जिस डिजिटल दौर से हम गुजर रहे हैं उस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए कि उसकी उतनी जितनी मेहनतों की ज़रूरत है उतनी मेहनतें नहीं हो पाती। असल में हुआ यह है कि एक बड़ा तबका जो है अदबी सहाफत का ही कह लीजिए नई सदी में, इसमें 21वीं सदी में, यह सोशल मीडिया की तरफ चला गया है अभी गुज़िश्ता 8-10 साल से, और सोशल मीडिया पर जाने के बाद उनके सामने सूरत हाल यह है कि उनकी एक चीज़ अभी शाये हुई, अभी उनके पास कमेंट आने शुरू हो गए, बस वो फारिग हो गए, कहने लगे बहुत अच्छा मैंने लिखा। अभी पिछले दिनों एक थी शायद मैं एक नज़्म पढ़ रहा था, कोई उसमें लिखा हुआ था आओ बच्चों, नूनगुलने के साथ तखातुब था, तो मैंने उसमें कमेंट किया कि ये गलत है और आप जो है आओ बच्चों लिखिए, तो उल्टा बजाय इसके कि कोई उसमें

0: अच्छा, कोई अदीब होता है, कोई शायर होता है, कुछ लोग उनके पास, मेरे पास कमेंट आने शुरू हो गए, कैसे ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, ये क्यों होगा। मैंने उन्हें लिख के समझाया कि जैसे आप ए लोगों बोलते हैं, ए लोगों नहीं बोलते, इसी तरह से आओ बच्चों बोलेंगे। तब वो शायरा थी, उनकी समझ में आई बात, और उन्होंने दोबारा फिर वो नज़्म अपनी ठीक करके दोबारा पोस्ट की। तो ये सूरत हाल है, चार हमारे पास कमेंट आ गए, 10 कमेंट आ गए, और हम फारिग हो गए कि हमने बहुत अच्छा लिख दिया है। रसाइल में तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी शक्ल में, चाहे कोई कितना भी कमज़ोर अदीब हो, वो ऐसा जाने ही नहीं देगा। लेकिन यह है कि चीज़ें
1: ये
0: सोशल मीडिया से नुकसान पहुंच रहा है, सोशल मीडिया में इसलाह की ज़रूरत है, सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं वो इसमें इसलाह करें, और अच्छे लोग जो हैं वो भी सोशल मीडिया से जुड़ें, और इसी तरह से जो चीज़ें देखें उन पर कमेंट करें, उन्हें बताएं,
1: यकीन
0: इसलाह करें उनकी। जब
1: यकीन
0: इसलाह करेंगे, अब मैंने उन्हें बताया कि जब आप सही लिखोगे तभी तो बच्चों की इसलाह होगी, वरना बच्चे तो यही पढ़ेंगे, यही बोलेंगे, और जब तक इसलाह का आपके यहाँ पहलू नहीं होगा तो यही चलता रहेगा, यही सिलसिला आगे बढ़ जाएगा।
1: यकीनन जी साहब, आप कुछ कह रहे थे।
2: मैं ये, एक तो आपने मार्केटिंग की बात की, थोड़ा सा प्रिंट मीडिया की मार्केटिंग मुतासिर हुई है। बहुत सी जो न्यूज़ एजेंसियां हैं, बुक शॉप्स हैं, उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है या कुछ और कारोबार करने लगे। उससे हमारे भी काफ़ी एजेंट्स और कम हुए हैं, और जब एजेंट नहीं होगा तो वो सप्लाई नहीं पहुंच पाती उन जगहों तक जहां तक हमारी पहुंचनी चाहिए। ये एक मसला है। और दूसरी बात, अभी जैसे मुनव्वर साहब ने कही, एक और अहद हाजिर में एक नई मसला ये भी है कि अब कोई भी शख्स जो है, एक नई तब्दीली आई है रवैये में कि वो सिर्फ तारीफ सुनना चाहता है। ये इंसानी फितरत है, हम ये चाहेंगे कि लोग हमारी तारीफ करें या हमें बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करें, लेकिन हमें इसके लिए भी तैयार होना चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती हुई है या किसी दूसरे ने हमारी कोई गलती की तरफ निशानदेही की है तो उसे हमें मानना भी चाहिए। लेकिन आज ये एक अफसोस की बात यह है, और इससे अदब का नुकसान भी हो रहा है, कि आज का अदब लिखने वाला ये तवक्को कर रहा है कि जैसे ही उसकी तहरीर सामने आएगी तो तारीफ से
0: सिर्फ
2: लोग कुल
0: तारीफ
2: बांधे,
0: तारीफ।
2: और अगर कोई उसकी तनकीद करता है तो वो चाहे कितनी ही सेहतमंद और जायज तनकीद क्यों हो तो वो बुरा मानते हैं लोग। ये चीज गलत है।
1: मेरे ख्याल से शायद 20-21 सालों में मंजरनामा बहुत तेजी से तब्दील हुआ है। जो अहम लिखने वाले हैं वो तेजी से हमारे दरमियान से गायब होते चले गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब संजीदा मौजूआत पे बहस करने वाले जो लोग हैं वो अगर हैं भी तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वो शिरकत नहीं करते हैं, बल्कि किनारा कर रहे हैं। हम सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है, एक तो सोशल मीडिया और एक रसाइल का जो एक पूरा एक मैं समझता हूँ कि एकेडमिक दुनिया जो हावी हो चुकी है रसाइल पर, इसकी वजह से भी जो है, जो कि हर टॉम डिक एंड हैरी जो है वो पीएचडी में आ गया है, और पीएचडी के मौजूद बड़े ही ऊट पटांग से होते हैं, उन मौजूद पे पीएचडी के वो मजामीन लिखते हैं, वो जब मजामीन लिख के भेजते हैं तो जाहिर है कि मुदीर एक नहीं मना करेगा, दो मना करेगा, चार मना करेगा, लेकिन वो उसकी भी एक मजबूरी है कि वो इदारत को अपनी जारी रखेगा, तो कहाँ तक मना करेगा। तो मेरे ख्याल से इस फिजा से भी जो है वो संजीदा लिखने वाले वो शायद दूर हुए हैं। क्या ख्याल है?
0: असल में संजीदा लिखने वाले दूर हुए हैं, और उसकी वजह यही है कि वो क्या करें, उनके सामने मसला यह है कि वो करें क्या, दूर क्या हो गए। एक तो एक पूरी की पूरी नस्ल खत्म हो गई है, या वो उम्र की इस दहलीज पे पहुंच गए हैं कि अब उन्होंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है, और नई नस्ल जो आई है वो अपना जिस तर्ज पे लिख रही है वो सबको पता है, और कुव्वत बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। पहले यह होता था कि लोग बर्दाश्त भी करते थे और हिम्मत भी रखते थे बर्दाश्त करने की। मुझे एक पुराना वाकया याद आ गया कि हजरत माहिर उल कादरी तबसरा निगारी में बहुत
1: जी,
0: मारूफ थे,
1: फरहान
0: और
1: निकालते थे।
0: बहुत फरहान निकालते थे, और किसी की भी किताब के अपना
1: जी जी जी तबसरे करते थे,
0: इतना उमदा तबसरा करते थे कि हर्फ बहर्फ उसको। अब उनके पास जोश मिली आबादी की यादों की बारात गई तो उन्होंने कहा कि भाई क्या किया जाए, उन्होंने कहा कि जोश साहब अपने हाथ से लिख के भेजेंगे तो तबसरा करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। तो जोश साहब ने एक किताब भेजी, उस पर लिखा बकरा हाजिर है, जोश साहब ने लिख के भेजा। तो इतनी सलाहियत थी, हालांकि जोश मिली आबादी के सामने फौज की कतारें खड़ी रहती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने, उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं गिरफ्त करेंगे मेरी, लेकिन उनके अंदर यह सलाहियत थी कि वो उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते थे। आज बर्दाश्त करने की हिम्मत है नहीं किसी में भी, आप किसी भी अदीब को उठा लीजिए, किसी को भी कोई बर्दाश्त नहीं करता।
1: यकीन इस गुफ्तगु में बहुत आप लोगों से दिलचस्प गुफ्तगु हुई, मारुल कादरी का आपने तस्करा किया। अभी मैंने कुछ दिनों पहले मैं उनवान चिश्ती का एक मजमून देख रहा था कि उन्होंने अपनी किताब है उनकी गालिबियात चंदवानात, तो उसके आखिर में जो है वो कसीदे राइया का उन्होंने किसी मौलवी से तर्जुमा करवाया था, और वो उसको कसीदे राइया के तर्जुमे को उन्होंने उसे शामिल किया। तो एक बहुत अच्छे आलिम है, ज़ीलम शख्सियत है, उन्होंने उसके ऊपर तबसरा करा, उन्होंने कहा कि उनवान चिश्ती को या तो अरबी नहीं आती थी या उन्होंने जिससे कराया उसे नहीं आती थी, कि पूरे कसीदे राइया को जो है उन्होंने तबाह कर दिया।

0: तो उस पूरे मजमून को उन्होंने लिखा छपा और जितने संजीदा लिखने वाले हैं सारे लोगों ने उसकी तारीफ की और उसको सराहा कि भाई उनान चिश्ती जैसा आदमी है, उससे गलती हुई है। तो हमारे वहाँ मेरे ख्याल से बात सही है कि जो एक पूरा मुआशरा तनकीद बर्दाश्त करने वाला था वो शायद ख़त्म हो गया। इस गुफ्तगू में हसन ज़िया साहब ने जो बातें कहीं या मुनव्वर साहब आपने जो बातें कहीं या हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचने का मकाम है कि आज जो पूरा मंजरनामा हमारे सामने है उर्दू सहाफ़त को कैसे तब्दील किया जाए, कैसे संजीदा मौजूआत को पेश नज़र रख के उन पर काम किया जाए। पुराने लोगों ने जो काम किया है इस वक्त ज़रूरत यह है कि उनको सामने दोबारा लाया जाए। जब तख्लीकी सलाहियतें कमज़ोर पड़ने लगती हैं किसी मुआशरे में तो उनको इस बात को की ज़रूरत महसूस करना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किया है हम पहले उसको सामने लाएं और लाते रहें उस वक्त जब तक हमारे अंदर जो है तख्लीकी सलाहियत वो दोबारा जोश न मारे या बेहतर तरीके से हमारी सलाहियतें काम में ना आए। आज की इस गुफ्तगू में उर्दू सहाफ़त के मौजू पर मुनव्वर हसन कमाल साहब और जनाब हसन ज़िया साहब आप दोनों से गुफ्तगू हुई। बहुत मालूमाती, बहुत अहम मौजू और बहुत ही अहम निकात की तरफ आप दोनों ने इशारा किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं आकाशवाणी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस मौजू पर एक बहस करवाई जिसका आज का जो मौजू था कि नई सदी में उर्दू सहाफ़त, तो इस मौजू पर बहुत ही बामानी बहस हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सामीन, अभी आप मुबाहिसा सुन रहे थे। शुरका थे जनाब मुनव्वर हसन कमाल, जनाब हसन ज़िया, जनाब तालीफ हैदर। निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब तालीफ हैदर। तो सामीन, ये था आज का प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

岸上播放的全印度电台的世界广播。听众朋友们，首先我们播送印度音乐节目，请收听 PT 这位上课弹的琴。

他把两颗南瓜挂在了妻子的脖子上。

0: 听众朋友们，今天的普通话节目播送到这里，谢谢收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना
2: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मेरे साथ हैं प्रेरणा शर्मा। नमस्कार प्रेरणा।
3: नमस्कार श्रोताओं।
2: आज खेल पत्रकारिता दिवस है तो देश और दुनिया के सभी खेल पत्रकारों को बधाई। और आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे फीफा विश्व कप के मुकाबलों की
3: और साथ ही बात होगी आईसीसी महिला T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल की, जहां इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए आमने सामने होंगी। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले का हाल भी जानेंगे।
2: साथ ही बात होगी विंबलडन टेनिस की और दिल्ली प्रीमियर लीग की, जिसका बीती रात कल ऑक्शन हुआ है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आजमी खास रिपोर्ट पेश करेंगे।
3: और साथ ही बात करेंगे कनाडा ओपन बैडमिंटन, यूनाइटेड स्टेट्स मैच टेबल टेनिस की भी और रहेंगे कुछ अन्य खेल समाचार।
2: तो आइए प्रेरणा शुरुआत करते हैं फीफा विश्व कप की, और जहां रोमांच शिखर पर पहुंच चुका है और राउंड ऑफ 32 के मुकाबले बेहद जबरदस्त, दमदार और रोमांचक हो रहे हैं।

0: फीफा विश्व कप के मुकाबलों में रोमांच का सिलसिला जारी है। बड़ी बड़ी टीमों को साख बचाने के लिए पूरा दमखम झोंकना पड़ रहा है। बेल्जियम की गिनती मजबूत टीमों में होती है, लेकिन इस फीफा विश्व कप में टीम सही लय में नहीं दिख रही है। अफ्रीकी छुपे रुस्तम माने जाने वाली सेनेगल की टीम के खिलाफ 85वीं मिनट तक बेल्जियम 2 गोलों से पिछड़ रही थी, लेकिन अगले लगभग 3 मिनट के अंतराल में बेल्जियम ने 2 गोलों से बराबरी कर ली और फिर अतिरिक्त समय तक खिंचे मुकाबले के इंजरी टाइम में पेनल्टी से हुए गोल के साथ बेल्जियम की नैया राउंड ऑफ 32 से पार लग गई। बेल्जियम ने यह मुकाबला 3-2 से जीता। यह अभी तक इस विश्व कप का सबसे उतार चढ़ाव भरा मुकाबला रहा। सेनेगल ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख दिखाया। 25वें मिनट में हबीब डियारा ने सेनेगल को बढ़त दिलाई। मध्यांतर के बाद मैच के 51वें मिनट में इस्माइल असार ने अकेले दम पर गोल कर भारत को 2-0 कर दिया।
1: Here they go here with Ismail Assar. Belgium, this one's right into the pass of Ismail Assar.
0: सेनेगल के प्रयासों से 2 बार गेंद गोल पोस्ट से टकरा कर रह गई, वरना उसकी बढ़त और भी मजबूत होती। ऐसा लग रहा था कि अब तो उलटफेर तय है, लेकिन बेल्जियम ने अंतिम क्षणों में वापसी कर ली। बेल्जियम के स्टार रोमेलो लुकाकू ने 86वें मिनट में गोल कर अंतर 1-2 कर दिया।
1: Lukaku keeps a near post finish. Brilliant touch over.
0: और लगभग 3 मिनट बाद योरी टिलेमांस ने हेडर से बराबरी दिला दी।
1: In from Trossard. Oh, Morijao came for it. Wow. In a flash.

0: Belgium are back.
1: Physical beating in there. It doesn't matter. He's going to find the back of the net.
2: अतिरिक्त समय में जब मुकाबला पेनल्टी शूटआउट की ओर बढ़ रहा था, तब वीडियो समीक्षा यानी वीआर तकनीक के परीक्षण के बाद रेफरी ने बेल्जियम को पेनल्टी अवार्ड कर दी। सेनेगल ने फैसले का कड़ा विरोध भी किया। 125वें मिनट में टिलेमांस ने पेनल्टी को गोल में बदलकर बेल्जियम को रोमांचक जीत दिला दी।
1: It was like a training park penalty, like he's done so many times before.
0: And it is over. From the brink to the next round.
2: अब बेल्जियम की टक्कर सह मेजबान अमेरिका से होगी। लगता है फीफा विश्व कप की मेजबानी अमेरिका को खूब रास आ रही है। सहमेजबान कनाडा और मेक्सिको के बाद यूएसए ने भी राउंड ऑफ 16 यानी प्री क्वार्टर में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका ने अंतिम 16 में प्रवेश के लिए 24 साल के इंतजार को समाप्त किया। बोलेगन और टिलमैन ने गोल किए। सैन फ्रांसिस्को में फोलोरिन बोलेगन ने हाफ टाइम से पहले गोल कर अमेरिका को शुरुआती बढ़त दिलाई थी। यह बोलेगन का इस विश्व कप में तीसरा गोल रहा। टीम ने गेंद प्रतिद्वंदी खिलाड़ी से अपने कब्जे में ली और टिलमैन को बढ़ा दी, जिन्होंने बॉक्स में बोलेगन को सटीक पास दिया, जिन्होंने लेफ्ट फुट से गेंद को गोल में उतार दिया।
1: Balogun's there. No one else is McKinney.
3: With a little flick, Tillman looking for Balogun. It might fall for Balogun.
2: अमेरिका की टीम का पलड़ा भारी था। बोलेगन और क्रिस्टियन पुलिसिच के दो गोल अमान्य भी किए गए थे। दोनों गोल ऑफसाइड करार दिए गए। बोस्निया के गोलकीपर मैट फ्रिज ने कई अच्छे बचाव भी किए थे। ऐसे में 1-0 की बढ़त सुरक्षित नहीं लग रही थी। कोच मॉरिसियो पोचेटिनो की टीम ने अपने घरेलू दर्शकों के बीच लगातार हमले बोले। मैकेनी और टिलमैन ने हमलों को पैनी धार दी। किसी यूरोपियन टीम के खिलाफ यह अमेरिका की 10 हार के बाद पहली जीत है। अमेरिका ने 2002 के ग्रुप चरण में पुर्तगाल को हराया था। उसके बाद विश्व कप के 13 मैचों से यूरोपियन टीम के खिलाफ उसे जीत नहीं मिली थी। इस मुकाबले में विजय के बावजूद अमेरिका को मैच में एक झटका भी लगा, जब उसके स्टार बोलेगन को प्रतिद्वंदी खिलाड़ी तारिक मोगेरमोविच को टैकल करते समय हुए फाउल के लिए रेफरी ने रेड कार्ड दे दिया। अब अमेरिका की टक्कर बेल्जियम से होनी है। ऐसे में 64वें मिनट में मिला रेड कार्ड अमेरिका को अगले मैच में भारी पड़ सकता है। ये वही बोलेगन हैं जिन्होंने पराग्वे के खिलाफ दो गोल किए थे। लगभग 26 मिनट अमेरिका को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। एक खिलाड़ी कम होने के बावजूद भी अमेरिका ने बढ़त मजबूत करने के प्रयास जारी रखे और बोस्निया की बराबरी के प्रयासों को भी टाला। 82वें मिनट में अमेरिका ने जीत सुनिश्चित कर ली, जब टिलमैन ने फ्री किक ली और गेंद लहराती हुई गोल पोस्ट के जाल में जा टकराई।
3: It is Tillman and it's in.
1: A bit, not a lot. Basile, the man looking to get down to his right hand team, how to deal with going a man down and getting through to the next round.
2: 2-0 की बढ़त के बाद मेजबान दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अमेरिका की ये विश्व कप के नॉकआउट में दूसरी जीत है। इससे पहले 2002 में मेक्सिको को हराया था। बोस्निया के लिए विश्व कप यादगार रहा, जिसे अपने दूसरे विश्व कप में पहली बार नॉकआउट में प्रवेश किया, कतर को हराया और कनाडा से ड्रॉ खेला। बात इंग्लैंड और डीआर कांगो के मैच की करें तो इंग्लैंड के लिए कप्तान हैरी केन सुपरस्टार हैं और अपने इसी रुतबे को वो कायम रखे हैं। हैरी केन ने डीआर कांगो के खिलाफ 2-1 की जीत में टीम के दोनों गोल किए। इंग्लैंड ने राउंड ऑफ 32 की इस जीत के बाद राहत की सांस ली होगी, क्योंकि 75वें मिनट से पहले तो एक गोल से पिछड़ने के समय टीम के खिलाड़ियों का दम फूलता सा नजर आ रहा था। मैच की शुरुआत में ही कांगो के ब्रायन सिबेंगा ने काउंटर अटैक पर 7वें मिनट में गोल कर इंग्लैंड की रक्षा पंक्ति को छिन्न बिन्न कर दिया था। कप्तान चांसेल ने गोल करने में असिस्ट किया था। गोल करने के बाद सिपेंगा ने खुशी में कलाबाजी लगाकर कैमरून के रोजर मिल्ला का जश्न यादों में ताजा कर दिया। 1990 के विश्व कप में कैमरून के रोजर मिल्ला गोल करने के बाद कॉर्नर किक के पास जाकर डांस करते थे, और इस विश्व कप में सिपेंगा ने

0: समरसेंट लगाकर अपनी खुशी का बेहतरीन अंदाज में इजहार किया। दरअसल इस विश्व कप में अफ्रीकी टीमें अच्छी छाप छोड़ रही हैं। कांगो की टीम हार गई, लेकिन फुटबॉल प्रेमियों को दिल उसने अपने मजबूत रक्षण से जरूर जीते होंगे। उनके गोलकीपर लियोनल मपासी ने पहले हाफ में कई बचाव कर इंग्लैंड को बराबरी से रोका। ये तो इंग्लैंड के पास हैरिकेन जैसे खिलाड़ी हैं जो दबाव के बीच भी निखरने का हुनर जानते हैं। बेशक जूड बेलिंगम और मार्क रशफोर्ड ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जीत का सहरा तो हैरिकेन के सिर ही बंधा। 75वें मिनट में हैरिकेन ने बराबरी दिलाई जब सब्स्टिट्यूट एंथोनी गॉर्डन ने बाएं ओर से शानदार क्रॉस फेंका और केन ने दमदार हेडर से गोल कर दिया। बराबरी के बाद तो इंग्लैंड की टीम में जैसे नई ऊर्जा भर गई। टीम ने दोनों फ्लैंकों से लगातार दबाव बनाए रखा और 86वें मिनट में पेनल्टी बॉक्स के ठीक बाहर हैरी केन को गेंद मिली और उन्होंने एक टच में दाएं पांव से जोरदार शॉट लगाकर दमदार गोल कर दिया।
1: Wraps his hips around it, strikes it with venom, and that is one of the best goals and one of the most important goals.
0: हैरिकेन वो नाम है जो खेल जगत में इंग्लैंड का मान बढ़ाता रहा है। 50-60 के दशक में ब्रिटिश एथलीट हैरिकेन रहे हैं, तब तो इस स्टार फुटबॉलर हैरिकेन का जन्म भी नहीं हुआ था।
2: फुटबॉलर हैरिकेन के लिए
0: एथलीट हैरिकेन प्रेरणा का सूत्र रहे होंगे। इंग्लैंड की टक्कर अब से मेजबान मेक्सिको से होगी। इंग्लैंड के दर्शक बेहद उत्साहित होंगे जिन्होंने कांगो के खिलाफ मैच से पहले प्री क्वार्टर का टिकट बुक करा लिया था, वरना एक समय तो कांगो ने उलटफेर करने के इरादे दर्शा दिए थे। टीआर कांगो तीसरे स्थान की शीर्ष 8 टीमों में शामिल थी जिसने पुर्तगाल को ड्रॉ पर रोका, उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया। हाँ, कोलंबिया के खिलाफ उन्हें हार जरूर मिली थी। कांगो इस विश्व कप से बाहर हो गई, लेकिन अभियान समाप्त होने से पहले उसने कई यादगार पहलू बटोरे। जी हाँ, ये तो बात थी फीफा विश्व कप की, जहाँ कल जो मुकाबले खेले गए, जहाँ अमेरिका ने बोस्निया को 2-0 से, इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से और बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से पराजित किया। और मुकाबले तो आज भी खेले जाने हैं प्रेरणा, और मुकाबले फिर सितारों की जंग देखने को मिलेगी जब पुर्तगाल और क्रोशिया आमने सामने होंगे। एक तरफ CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्हें गोल मशीन के नाम से जाना जाता है, दूसरी तरफ दुनिया के प्रख्यात मिडफील्डर का मोद्रिच। दोनों कप्तानों और दोनों सितारों की एक ये दिलचस्प कश्मकश होगी इस मुकाबले में। इसके अलावा ऑस्ट्रिया स्पेन का भी मुकाबला है और स्विट्जरलैंड भी उतरेगी। तो क्या है इस जो आने वाले मुकाबले हैं, इनके बारे में क्या बताना चाहेंगी?
3: फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट चरण में अब मुकाबले और भी रोमांचक होते जा रहे हैं। आज देर रात और कल सुबह होने वाले 3 अहम मुकाबलों की चर्चा कर लेते हैं, जिनमें स्पेन का सामना ऑस्ट्रिया से, पुर्तगाल की टक्कर क्रोशिया से और स्विट्जरलैंड का मुकाबला अल्जीरिया से होगा। तीनों टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। सबसे पहले नजर रहेगी स्पेन और ऑस्ट्रिया के मुकाबले पर, जो भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। स्पेन ग्रुप एच में 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ शीर्ष स्थान पर रहते हुए नॉकआउट में पहुंचा है। टीम ने सऊदी अरब को 4-0 और उरुग्वे को 1-0 से हराया, जबकि कार्बो वर्डे के खिलाफ मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप जे में 1 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ अगले दौर में जगह बना ली है। टीम ने जॉर्डन को 3-1 से हराया, अर्जेंटीना से 0-2 से हार झेली और अल्जीरिया के साथ 3-3 का रोमांचक ड्रॉ खेला। दोनों के बीच अब तक 16 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें स्पेन ने 9, ऑस्ट्रिया ने 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे। विश्व कप में ये दोनों की दूसरी भिड़ंत होगी। पिछली बार 1978 के विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने स्पेन को 2-1 से हराया था। स्पेन की नजर युवा स्टार लामिन यामाल पर होगी, जबकि ऑस्ट्रिया को कप्तान मार्सेल साबिजर से बड़ी उम्मीदें रहेंगी। इसके बाद भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 पर टोरंटो में पुर्तगाल और क्रोशिया आमने सामने होंगी। विश्व कप इतिहास में दोनों देशों की ये पहली भिड़ंत होगी। हालांकि दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 10 मुकाबलों में पुर्तगाल का दबदबा रहा है। पुर्तगाल ने 7 मैच जीते हैं, जबकि क्रोशिया को केवल 1 ही जीत मिली और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। पुर्तगाल ग्रुप के में अपराजित रहते हुए नॉकआउट

क्वार्टर में पहुंचा। टीम ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया, जबकि कांगो डीआर और कोलंबिया के खिलाफ मुकाबले ड्रॉ रहे। दूसरी ओर क्रोशिया ने शुरुआती हार के बाद शानदार वापसी करते हुए पनामा और घाना को हराकर अगले दौर में अपनी जगह बनाई। इस मुकाबले में सबकी नजरें पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर रहेंगी, जिन्होंने ग्रुप चरण में 2 गोल किए हैं। वहीं क्रोशिया की उम्मीदें अनुभवी कप्तान लुका मॉड्रिच के प्रदर्शन पर टिकी होंगी। दिन का तीसरा मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 8:30 पर वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया के बीच खेला जाएगा। स्विट्जरलैंड ने ग्रुप बी में 2 जीते और 1 ड्रॉ के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। टीम ने बोनसेनिया एंड हर्जेगोविना को 4-1 और मेजबान कनाडा को 2-1 से हराया, जबकि कतर के खिलाफ मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। वहीं अल्जीरिया ने 1 जीत 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ नॉकआउट में जगह बनाई। टीम को पहले मुकाबले में हार मिली, लेकिन उसके बाद जॉर्डन को हराया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ 3-3 की बराबरी खेलकर अगले दौर का टिकट हासिल कर लिया। दोनों टीमों के बीच अब तक केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं और दोनों में स्विट्जरलैंड को जीत मिली है। विश्व कप में ये उनकी

0: ये सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: थैंक यू आशीष सिन्हा फॉर बीइंग विद अस ऑन आकाशवाणी एंड गिविंग अस अ वेरी इनडेप्थ व्यू ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन टू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स दैट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल इन दिल्ली एनसीआर एंड उत्तर प्रदेश। थैंक यू।
2: थैंक यू।

कुआ या की पेके जाइडिया है उकुआकारी उसिया की डिजिटाली टाटी जोला कुपोटेजा आउ कुहारी बुहाटी इट्टा का ओंडोलेवा न वामिल की वकाडी वटावेजा कुफनिया उथिबिटिशाजी व वकाटी हलीसी वेन्नेवे कार्य की इलेक्ट्रॉनिक की राइस व इंडिया व अंगाम्बो नीम पंगुम कु उनाउलेंगा राइया कु बदलीशा हुडुमा जा ओसियाई क्वा की मटाइफा या वाहिंदी कुपीटी या मिफुमो कामली वा की डिजिटाली चीनी मिफुमो हुओ वा उम्बाजी वानावेजा कुकामलीशा मचकातु मजीमा वा उसियाई मिटंडाउने कुआंजिया कुवसिलीशा माओंबी ना कुपाकिया हाटी जा उसेडीजी हाडी कुपाकुआ कारी इनाउटेंगेनेजवा की डिजिटाली बादैक कु इदिनिश्वा मामिल्की वा कार्डी वालीपो वानावेजा पिया कुपाटा कार्डी याओ की डिजिटली कटिका वीजा विंगी बिला कुहिताजी मा उंबिम पिया आओ उतिबिटिशाजी वा किमीली चीनिया मा पंगी लियुम पिया शर्तिला कुटोया टेना की जी टाबु चाओसी आई बादे कुपोकिया पासिपोर्टिम पिया बादाए उम्री वा मेका इश्वीनी लिमुंडोले वा हाटा ही वियो वा मिल्की वकादी वटाहिताजी कु सा सीशा माइलेजो याओ यानाय सियाना न पासपोर्टी मुटनाउनी वकाटी वोटे पासपोर्टी मपेया इनापो टोया क्वा वा ओम्बी मिफुमो हुओ हु टोया उजोईफु रहीसी न कामली वाकी डिजिटली अम्बाओ उंडो या हिताजी ला उपेपो वाकी मिल्की हु रुहुसु हु फिकियाजी वकाटी वोटे कुपेटिया विफावा मुकुनूनी हु हराकेशा उ सिंडिकाजी कुपेटिया उटोवाजी वाकी डिजिटली उंडो या हतारी या कुपोटेजा आओ कुहरीपु हतीसी हलीसी न कुवजेशा उ सफेरी लाइनी क्वा कुवजेशा किबालीचा उ हामियाजी हराका क्वा सरकारी मफुमो वा unahakikisa usindikazi kamli mtinaoni hupunguza gharama za makaratasi na utawala huimarisha usimamizi wa data na ufutiliazi wa pamoja na huunganishwa na mifumo ya uhamiaji ya kidijitali kwa ajili ya uthibitishaji wa wakati halisi katika viwanja wa ndege. Hii husababisha uthibitishaji bora wa utambulisho, usalama ulioimarishwa na hatari ya ulagai kupunguzwa. Kuzinduliwa kwa lengo la FCRA 2.0 na kadi ya kielektroniki ya OCI ni mafanikio mengine muhimu ya wizara ya mambo ya ndani katika kutumia teknolojia kwa ajili ya utawala bora na utoaji wa huduma kama umma. Inachangia kuzenga mfumo wa utawala ulio wazi zaidi, salama na unaowezeshwa kidijitali. Na unamisho wa mazungumzo baada ya habari. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

0: बताओ, समस्त परिवार की भी फरमाइश आई है, सुनना चाहते हैं सनोज को। और ये SMS आया है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़ और समस्त राठौड़ परिवार का। साथ ही गुलाम रोड हर गोबिंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र संधु और समस्त संधु परिवार का हमें मैसेज आया है, जिन्होंने फरमाइश की है सनोज की।
1: गांव लोहागढ़ ठाकुरवाला से फरमाइश भेज रहे हैं स्वर्ण सिंह गिल और उनका पूरा परिवार। गांव गोविंदगढ़ मांझी वाला श्री करणपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं राजू टूटे जा और उनका पूरा परिवार। पुरुषोत्तम कुमार शेख जफर हसन ने हमें फरमाइश भेज रहे गांव डंडी तहसील भद्रवाह जिला डोडा जम्मू कश्मीर से। ये फरमाइश हमारे पास में आई है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, भेजने वाले हैं सुरेश ग्रोवर और इनका पूरा परिवार। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं हीरा मणि वर्मा और इनका पूरा परिवार। गांव चोहलदा बागपत उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं संजय ढींगिया और इनका पूरा परिवार। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से भी फरमाइश भेज रहे हैं विजेंद्र विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। यह समय समय मिला है गांव ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। भोपालगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं धर्मेंद्र छीपा और इनका पूरा परिवार।
0: और ये SMS आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और समस्त परिवार का। इन्होंने भी फरमाइश भेजी है और सुनना चाहते हैं सनोज को। साथ ही ये फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ हम सदा हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू और जितेंद्र साहू और पायल साहू का। इसके अलावा फरमाइश करी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और समस्त वर्मा परिवार का, सुनना चाहते हैं सनोज को।
1: सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर सनोज की आवाज में ये रागनी।

0: तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे सनोज की आवाज़ में, ये रागनी और किस्सा था कृष्ण सुदामा का।
1: और अतुल भाई, स्वच्छता किसी भी समाज की प्रगति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आधार होती है, और स्वच्छ वातावरण न केवल बीमारियों को कम करता है बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की शुरुआत की। और अतुल भाई, इस चरण का लक्ष्य केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं बल्कि प्रत्येक गाँव को स्वच्छ, स्वस्थ और कचरा मुक्त बनाना है।
0: बिल्कुल, देखिए, और स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य यही है कि स्वच्छ 2020 से 2025 तक संचालित किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण भारत में ODF प्लस की स्थिति बनाए रखना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट जो पदार्थ है उनका वैज्ञानिक और प्रभावी प्रबंधन करना है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये तो रही जानकारी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं ईसम सिंह और सचिन शर्मा, इनके लिए भी SMS आ गए हमारे पास में कुसुम बहन।
1: और ये SMS हमें मिला है ग्राम पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा और उनके समस्त परिवार का, पटेल नगर मलोट से राम डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया और समस्त परिवार का, GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडली पंजाब मोहम्मद अनवर अंसारी और समस्त परिवार का। साथ ही हमें फरमाइश भेजी है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद और समस्त परिवार का। और इसके अलावा हमें मैसेज आया है असम से हितेंद्र दास का, उन्होंने फरमाइश की है, और इनकी फरमाइश एक और फरमाइश आई है कुगदा कुम्हाड़ी छत्तीसगढ़ से बलराम बया दामनी बया और समस्त परिवार का।
0: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से फरमाइश भेज रहे हैं रवि कुमार राहुल और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं श्रवण कुमार प्रजापति और उनका पूरा परिवार। सादुल शहर से फरमाइश भेज रहे हैं राम कुमार रेवाड़ और इनका पूरा परिवार। MLB रोड ग्वालियर से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश खुराना पप्पी और इनका पूरा परिवार। जमानिया गाजीपुर से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश जायसवाल और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भेजने वाले हैं विक्रम कडवासरा और इनका पूरा परिवार। सचिन कुमार और ईसम सिंह को ही सुनना चाहा है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन और उनके पूरे परिवार ने। वडिंगखेड़ा पंजाब से हमारे पास में फरमाइश आई है भेजने वाले हैं मिंटो टॉम्स और इनका पूरा परिवार।

0: जी हाँ, सचिन शर्मा और ईसम सिंह को ही सुनने की फरमाइश की है। गांव मुरादनगर जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज और समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश है सोमनाथ कालिया और समस्त परिवार की। इसके अलावा हमें मैसेज आए नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामणि से अकरम हुसैन और समस्त परिवार का। एक और हमें SMS आया है नूर महल महसूल सीतामणि बिहार से ही। और इसके अलावा पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से हमें फरमाइश की है अनिल मोहन उषा मोहन और समस्त परिवार ने।
1: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर सचिन और ईसम सिंह की आवाज में ये रागनी।

0: तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे ईसम सिंह और सचिन शर्मा की आवाज में ये रागनी, और किस्सा था महाभारत के वैराट पर्व से।
1: बिल्कुल,
0: ये रागनी अभी हमारे सभी बहन भाइयों ने सुनी, और इसी रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम, राम, राम।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है।

फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम, राम। अतुल भाई
1: जी, कुसुम बहन,
0: इसमें भी हम बातचीत सुनवाएंगे और योजना के बारे में भी जानकारी देंगे और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और साथ ही साथ मनोरंजन भी होगा।
1: बिल्कुल, तो भाई हम एक बातचीत भी अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए लेकर के आए हैं कि बकरी पालन से जो हमारे छोटे किसान भाई हैं वो किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एस के सिंह, पूर्व परियोजना निदेशक ICAR नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो कुसुम बहन, लेते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। खेती के साथ साथ पशुपालन का हमेशा से रिश्ता रहा है, क्योंकि जब से खेती आपने शुरू की है और खेती बिना पशुओं के नहीं हो सकती, और यहाँ तक कि अगर आपकी खेती में कभी छोटा मोटा नुकसान भी हो जाए तो आपकी भरपाई पशुपालन से हो जाती है। तो पशुपालन को अगर हम रोजगार का जरिया बनाते हैं, और उसमें विशेष तौर पे गाय भैंस को तो ज़्यादा महत्व दिया गया, लेकिन जो भेड़ और बकरी, संख्या तो इनकी बहुत है लेकिन उतना इस पे जोर नहीं दिया गया, और अगर इसे रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व स्तर पे भी किस तरीके से किया जाए जिससे कि किसान का भी फायदा हो, देश का भी फायदा हो, और जो इससे जुड़े हमारे व्यवसायी हैं या जो जुड़ना चाहते हैं उनको भी लाभ मिल सके। और इसकी जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर एस के सिंह जी को, जो कि परियोजना निदेशक रह चुके हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। सिंह साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, जैसा मैंने जिक्र किया कि भेड़ और बकरी पालन, और इसको हमारे किसान भाई जो एक तो मध्यम या और निचले तबके के हैं वो लोग करते आए हैं, लेकिन इसको अगर बड़े स्तर पे ले जाना हो और देश नहीं विश्वव्यापी स्तर पे, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि कैसे ले जाया जा सकता है?
3: अगर हमें खाद्य सुरक्षा पे ध्यान देना है तो पशु उत्पादों से जो खाद्य है आदमियों के लिए, वो सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता होती है प्रति व्यक्ति, चाहे वो यूरोप में रहता हो, चाहे एशिया में रहता हो, चाहे भारत में रहता हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, चाहिए। अब आप अपने भारत देश की देखें
2: जी,
3: तो इसमें आप पाएंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा बकरियां होती हैं और अच्छी संख्या में भेड़े भी हैं
2: जी।
3: तो संभावनाएं तो अपार हैं, केवल हमें क्या करना है कि आधुनिक युग में विज्ञान का, पशुपालन तकनीकियों का समावेश करते हुए किसानों तक इतना ज्ञान पहुंचा देना है कि वो सक्षम हो सकें भेड़ और बकरी का ज्यादा से ज्यादा संख्या में कम लागत में उत्पादन करना। और दूसरी सबसे बड़ी कि हमारा जो भौगोलिक परिवेश जो देश का है
2: जी,
3: जिसमें हमारा जो है जोत बहुत छोटी होती जा रही है। आप देखें कि जोत इतनी छोटी हो गई है कि ट्रैक्टर तो चलना मुश्किल हो जाता है आजकल तो, पूरा यूपी बिहार बंगाल इधर देखें तो
2: जी।
3: ऐसी स्थिति में भेड़ और बकरी जिसका वजन कम है, साइज कम है, उनको पालना बहुत ही अनुकूल होगा।
2: कम क्षेत्रफल में उनको रख भी सकते हैं,
3: रख सकते हैं, उनका फार्म खोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विश्व में अलग अलग इस महाद्वीप में और देशों में कहीं बकरी के मांस का और दूध का बहुत मांग है, कहीं भेड़ की मांग है। उस

0: को देखते हुए हमें अपने देश में बहुत बड़े स्तर पे भेड़ और बकरी का उत्पादन करना चाहिए, किसानों को आकर्षित करना चाहिए कि वो भेड़ और बकरी न केवल देश की खपत के लिए बल्कि वैश्विक खपत के लिए उत्पादन करें।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि उत्पादन करना चाहिए, तो इसको अगर देश के स्तर पे बात करें तो इसका कैसे बढ़ाया जा सके?
0: देखिए, जब तक आप संगठित और व्यवसाय के रूप में नहीं लेंगे और सरकार इसको प्रमोट नहीं करेगी तब तक आएगा नहीं। मैं सरकार के प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ। तो सरकार पे बहुत ज्ञान है, बहुत तकनीकियां हैं, संस्थान हैं, योजनाएं हैं प्रादेशिक लेवल की और देश के स्तर की, लेकिन उनको जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो इस पशुपालन में आना चाहते हैं, उन तक पहुंचा करके उनमें एक उत्साह पैदा करना होगा जिससे कि वो लगन लगा के काम करें। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 5-6 साल, अगर 10 साल हम लोग मतलब देश के स्तर पे बच्चों को, बेरोजगार लोगों को शिक्षा दें कि भेड़ बकरी पालन करके आप लाभ कमा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे जितने भी देश में हैं, और देश के भेड़ बकरी ऐसी है कि हर क्षेत्र में पाई जाती, राजस्थान की गर्मी से लेकर के और आप देखें कि उत्तराखंड, लद्दाख, लेह में भी पाई जाती है, तो हर मौसम के लिए अनुकूल है। तो हमें जो है गांव के लेवल पे, प्रदेश के लेवल पे, देश के लेवल पे किसानों को प्रोत्साहन दे करके उनका ज्ञानवर्धन करना चाहिए, उनकी क्षमता विकास की बात हम कर रहे हैं, तो उनको कुछ इतना लोन मिल जाए, इतना संसाधन मिल जाए जिससे कि 100-200-400 बकरियां या भेड़े वो पाल सके। तब क्या होगा कि अगर आपके एक गांव में 2-4 लोग भी ऐसे आते हैं जो कि बकरियां या भेड़े पाल करके लाभ कमाने लग गए, तो अपने आप एक प्रदर्शन फॉर्म की तरह काम करेगा और गांव के युवा लोग जो है आकर्षित होंगे,
1: काम भी करेंगे, उनके साथ भी जुड़ेंगे।
0: जी,
1: ये तो रही देश स्तर की बात। जब हम किसान की बात करते हैं, क्योंकि किसान हमेशा देखो मेहनती तो होता है, लेकिन हर व्यक्ति की एक धारणा रहती है कि जिधर थोड़ा आसान होता है उसी की तरफ वो लालायित होता है, और किसी भी कार्य करने के लिए उसमें जरूरत पड़ती है कि कठिन कार्य करने की, तो वो कैसे किसान इसको करे जिससे इसमें जितना वो पारंपरिक तरीके से करता है जो उसे लाभ मिलता है वो उसका एक साधारण लाभ होता है, लेकिन जब उसे वो व्यवसाय के स्तर पे करना चाहता है तब उसका लाभ अच्छा होता है।
0: एक जो है नेचुरल जिसे कहते हैं प्राकृतिक नियम है
1: जी,
0: कि जीव का जितना बड़ा आकार होगा उतना सक्षम होगा
1: जी,
0: और बीमारियां कम लगेंगे, मृत्यु कम है। जितना छोटा होगा कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी मरेंगे, ज्यादा संख्या में मरते हैं, तो वो एक नैसर्गिक नियम है ये। तो अगर आप पशुपालन में देखिए तो गाय भैंस की अपेक्षा भेड़ बकरी ज्यादा थोड़ा ससेप्टेबल है, मृत्यु दर ज्यादा होती है, बीमारियां ज्यादा लगती
1: जी।
0: तो यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि देश लेवल पे और यहाँ सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, समय पे वैक्सीन मिल जाए उनको, समय पे परजीवियों की रोकथाम के लिए, परजीवी बहुत लगते हैं, बाल है ना इनका भेड़ बाल बकरी, इसमें परजीवी किलने हैं, जुए हैं, बहुत लगते हैं। तो अब मैं बताऊं कि 2 चीजों का रोकथाम कर ले हम देश में, तो आप पाएंगे 3 या 4 साल में संख्या भी दूनी होगी, उत्पादन भी दूना होगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे जो वैक्सीनेशन है उस पे ध्यान दिया जाए, उसके अलावा जो हमारी नस्लें हैं
0: जी,
1: क्योंकि बहुत सी जो हमारी पुरानी पारंपरिक नस्लें हैं तो उनमें उतना विकास नहीं हुआ है और नई नस्लें भी लाई गई हैं, तो उनको सुधार के भी कार्यक्रम चलाए जाएं, अगर नई नस्लों को किसान भाई पालें तो उससे ज्यादा उन्हें फायदा होगा।
0: मैं यहाँ पे एक कहना चाहूंगा कि हमारे पास भेड़ की भी बकरियों की भी 40 से ज्यादा नस्लें हैं
1: जी,
0: नस्लों की कमी नहीं है। कमी क्या है, हमारे पास ऐसा संगठन नहीं है, ऐसा ढांचा नहीं है जिसमें कि उन नस्लों के बढ़िया अच्छी अनुवांशिक क्षमता वाले पशुओं की पहचान की जाए। लेकिन हमें, आपको या किसी संगठन को ये नहीं पता है कि वो जानवर कहाँ है। जिस दिन ये ज्ञान हमें आ जाएगा उस दिन उनकी क्षमता भी हम उपयोग कर लेंगे, क्षमता अनुसार उनका उत्पादन होने। तो नस्ल सुधार में सबसे पहली चीज देश के स्तर पे और नस्ल के स्तर पे हमें ये कहनी चाहिए, किसानों के पास एक से एक अच्छे जानवर है। बस क्या है कि हमारे पास एक ढांचागत संरचना नस्ल विकास का नहीं है, पूरे देश में नहीं है। तो किसी भी नस्ल का ढांचा या संगठन या सोसाइटी नहीं है जो उस नस्ल को देखे। तो सबसे

0: बड़ी आवश्यकता ये है कि हमें हर नस्ल का एक ऐसी सरकारी अधिकृत सोसाइटी बनानी होगी जो उस नस्ल की देखभाल करे।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कोई भी युवा अगर अपने रोजगार के लिए भेड़ और बकरी पालन करना चाहता है तो कैसे शुरुआत करें, कहां से शुरुआत?
0: बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि पहले तो आपको भेड़ का भी संस्थान है भारत सरकार का, बकरी का भी है, एक जयपुर के पास है, एक मथुरा में है। तो अगर शुरुआत करना चाहें तो वहां जाइए, देखिए, वैज्ञानिकों से बात कर लीजिए। जहां तक नस्ल का चुनाव करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए पोल्ट्री में क्या है कि हैचरीज हैं, आप उनको कहिए कि भैया इस नस्ल की मुर्गी का 10,000 जो है बच्चे चूजे चाहिए, मिल जाएंगे। बकरी में आप 10 मांगे कोई देने को तैयार नहीं, कोई समझा नहीं,
1: मुश्किल है।
0: इसमें केवल कठिनाई कहां होगी, उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करके किसानों के पास जाना होगा और जो ज्ञान जो उनको मिला है या अपने ज्ञान से अच्छे जानवरों का चयन करना होगा और वो जानवरों का चयन करके अपने पास लाएंगे। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक इनका जनरेशन इंटरवल जो है 2-2.5 साल का है, 2.5 साल के आसपास एक नस्ल बदल जाती है। तो आप पाएंगे कि 2-3 पीढ़ी है, मतलब 6 साल में आपके पास इतने बढ़िया नस्ल के जानवर होंगे, दुनिया आके देखेगी कि भैया ये जानवर। तो केवल दो चीजें किसानों को क्या करना है कि आपको एक नस्ल के लक्षण चाहिए, जैसे बर्बरी, बीटल, जमुनापारी, झकराना, ब्लैक बंगाल जो भी है, उसके आप देख लीजिए कि उसका स्टैंडर्ड्स क्या है, उस अनुसार जानवर लाइए। जहां तक मैं जानता हूं दोनों संस्थान 10 दिन का प्रशिक्षण देते हैं। तो मैं जितने भी लोग इस व्यवसाय में घुसना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, निवेदन यह है कि आप उनकी वेबसाइट जाइए, बकरी अनुसंधान संस्थान की या भेड़ अनुसंधान संस्थान की, वहां पे उनके प्रोग्राम आते हैं प्रशिक्षण के, आप 10 दिन का या जितना भी हफ्ते भर का होता है उसमें भाग लीजिए। बहुत सक्षम वैज्ञानिक आपको ट्रेनिंग देते हैं, आप जाएंगे तो थोड़ा सशंकित जाएंगे कि क्या मिलेगा, लेकिन जब आएंगे तो आप एक पूर्ण पशुपालक बन के आएंगे। तो किसान भाइयों, जिसको भी पालना है आप प्रशिक्षण लीजिए, और अगर संभव हो, क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज फार्म नहीं है, बहुत कम है, तो कुछ दिन आप जो है जो पारंपरिक किसान है, पुस्तैनी जिनका है, जनरेशन दर जनरेशन, उनसे उनके सानिध्य में रहिए, बात करिए, सीखिए, और ज्ञान कभी जाया नहीं जाता।
1: और अगर कोई शुरू करना ही चाहता है तो उसका सही समय क्या हो सकता है?
0: देखिए, भेड़ और बकरियां बाल वाले जानवर हैं, साल में एक बार बच्चे देते हैं, 60% जानवर 2 बार देते हैं
1: जी।
0: तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, भेड़ हो या बकरी हो, जैसे ही प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त होती है, उत्पादन वाली अवस्था को, कभी जाया नहीं जाती, वो या तो गाभिन होगी या बच्चे पिला रही होगी, कभी सूखी 1-2 महीने के लिए होती है
1: जी।
0: तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा उत्पादन में होती है, तो उनकी देखभाल और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पहली बार, और वो तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास उसका ज्ञान हो।
1: और आजकल तो जैसे बात होती है कि मार्केटिंग की, जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि हमने इंपोर्ट तो लगाया है, उसमें मेहनत मजदूरी और जो भी है लेबर कास्ट सब कुछ लगा है, लेकिन उसकी भरपाई जब ही होगी जब आउटपुट निकलेगा
0: जी।
1: तो मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और क्या इसका सही तरीका है?
0: पहली बात यह है कि मार्केटिंग का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें
1: जी।
0: तो मार्केटिंग से पहले एक चीज है कि लागत कम से कम कर रखने की कोशिश करिए, वो आप तकनीकी ज्ञान आपके पास हो। अब मार्केटिंग की बात आती है तो ये दोनों मानसेतु हैं। तो क्या है कि भारत देश में लगभग 6 या 7 ऐसे त्योहार हैं
1: जी
0: जिसमें कि बकरी और भेड़ के मांस की मांग, जिसे कहते हैं, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि 1.5 गुना, मतलब आपको 30-40% दाम बढ़ जाता है। अच्छा जानवर है, आपको मुंह मांगा कीमत मिलेगी, लेकिन सभी जानवर उनका मूल्य है ऐसे समय में उससे 1.5-2 गुना कीमत पे बिकते हैं बाजार में। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आपको उस योग्य, उस गुणवत्ता वाले जानवरों का उत्पादन करना पड़ेगा जो कि लोगों को आकर्षित करे। तो एक तो यह है कि स्थानीय मांग है, दूसरी बात यह है कि इन मांस के प्रति प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है देश की बढ़ती जा रही, तो वो आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तो यह है कि प्रतिदिन आपको, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाजार में आपके पास जानवर हो और न बिके, कुछ तो ऐसा है कि माल नहीं बिक रहा, लेकिन भेड़ वगैरह ऐसा है कि कभी हो ही नहीं सकता कि आपके न बिके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा बड़े किसान बनना चाहते हैं, संगठित होकर के आप देश का और पूरे विश्व के मार्केट को देखिए, एक्सपोर्ट करने वाले बहुत ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, हर जगह बैठे हैं,

0: जी
1: और वो इस ताक में रहते हैं, खुश रहते हैं कि अच्छा जानवर कब कितना मिलेगा। अगर आप 2-3 ट्रक अच्छे जानवर एक उम्र के स्वस्थ जिसमें कि रोग नहीं हो, रोगी होगा जानवर बहुत था, हड्डी हड्डी निकलेगी, मांस के लिए अच्छा नहीं माना जाता, स्वस्थ जानवर हो, आप जो मांग मांगेंगे वो मिलेगा।
0: डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आज के दिन जो बकरी पालन दूध के लिए भी किया जाता है, क्योंकि बकरी के दूध की भी मांग बहुत ज्यादा है और उसकी कीमत भी बाजार में अच्छी
1: बहुत है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। दूध का बकरी का एक, मैं जहां तक देख पाता हूं, हमारे पास जो है सबसे ज्यादा दूध देने वाली है बीटल है, जमुनापारी है, जखराना है, बर्बरी भी अच्छा दूध दे देती है, कुछ नस्लें हैं। मेरा अनुभव यह है कि केवल दूध के लिए व्यावसायिक तौर पर पालना थोड़ा सा लाभदायी नहीं होगा। आप दूध और मांस
0: दोनों के लिए
1: पालिए तो अच्छा हो जाता है। तो दूध के लिए यह है कि आप अगर एक दिन में 400-500 लीटर दूध उत्पादन कर लेते हैं तो फिर तो आप देश में मशहूर हो जाएंगे। बकरी का दूध जो है छोटे बच्चों में 2-3 महीने, माँ भी सर्विस पे जाते हैं, पिताजी भी सर्विस जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए बकरी का दूध बहुत अच्छा माना जाता है, पाच्य माना जाता है। और लोग, मैं बताऊं, अच्छे अच्छे व्यवसायी खोजते हैं कि उनको जो है मुंह मांगे कीमत पे शुद्ध बकरी का दूध मिल जाए। आप वो मार्केट पकड़िए, आपको फायदा होगा, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है कि आपके पास कम से कम 200-250 लीटर बकरी का दूध आपके पास हो। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि या तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दूध कलेक्शन, जैसे PCDF है, NDDB है, इस तरीके से बकरी के दूध गांव-गांव से इकट्ठा करके प्रोसेसिंग करके बेचने के एक व्यवसाय वो भी हो सकता है आपका। आप बकरी मत पालिए, लेकिन बकरी पालकों से दूध इकट्ठा करिए, उनको प्रोसेस करिए और सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए कि शुद्ध बकरी का हो
0: जी।
1: और आप देखिए कि आप फेमस हो जाएंगे, स्पेशली विशेषकर जब आप दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता के आसपास हो,
0: मेट्रो साइड,
1: हाँ मेट्रो साइड में हो, वहां पे बहुत इसकी मांग है।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत विस्तार से भेड़ और बकरी पालन के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारे किसान भाई पाल करके रोजगार के तौर पे इसे देख सकते हैं और अपना ही विकास नहीं, इसमें देश के विकास में भी भागीदार बन सकते
1: जी।
0: हैं। डॉक्टर एसके सिंह जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बकरी पालन छोटे किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय। डॉक्टर एसके सिंह, पूर्व परियोजना निदेशक ICAR नई दिल्ली से शिवनंदन लाल की बातचीत।
3: बिल्कुल, देखिए बात बहुत अच्छी जानकारी मिली है हमारे सभी किसान भाइयों को कि देखिए बकरी के पालन में और पशु पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन के साथ साथ जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं
2: बिल्कुल,
3: तो दोहरा लाभ भी लेते हैं। और दोहरा लाभ जब मिलता है जब हमारी मिट्टी अच्छा उत्पादन देती है
2: बिल्कुल, और जो योजनाएं बताई गई हैं किसान भाई बहनों के लिए उसका लाभ लेते हैं
3: बिल्कुल।
2: मुझे पता है अतुल भाई आप बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। ये एक योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कृषि योजना है। इसमें किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि की वैज्ञानिक जांच के आधार पर एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है अतुल भाई, जिसमें मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति तथा उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह दी जाती है। इससे खेती की लागत कम होती है, उत्पादन बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है।
3: बिल्कुल, देखिए इससे क्या होता है कुसुम बहन, जब हमारे किसान भाई अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाते हैं या अपनी मिट्टी की जब जांच कराते हैं तो जांच कराने में उन्हें ये मालूम हो जाता है कि उनकी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी हो गई है। तो क्या होता है कि जब ये जांच के लिए उनकी मिट्टी लैब के अंदर जाती है तो जब वहाँ जांच होती है तो उसमें पता पड़ जाता है हमारे किसान भाई को कि मेरे जमीन के अंदर पोटाश की कमी हो गई या सल्फर की कमी हो गई या और किसी पोषक तत्व की कमी हो गई है, तो उसी की मात्रा जो है हमारे किसान भाई फिर अपनी मिट्टी के अंदर डालते हैं तो उनका उत्पादन जो है वो बढ़ता है।
2: बिल्कुल अतुल भाई, जैसे आपने बताया कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, इन सब की जरूरत होती है और इसके अलावा अम्लीय क्षारता भी जो होती है उसमें एक अनुपात में होता है इन सब चीजों का, और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन है या नहीं है, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरन, इतनी सारी जो 12 प्रमुख मानकों की जांच रिपोर्ट एक तैयार होती है।
3: बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व होते
2: बिल्कुल
3: हैं।
2: और ये तो हम अपने आप अंदाजा नहीं लगा सकते,
3: अंदाजा कहाँ, जांच के द्वारा ही हमें पता पड़ती है हमारे किसान भाइयों को सबको, हमें भी। और देखिए हम तो यही कहेंगे कि अपने खेत की जब मिट्टी की जब आप जांच कराएं

0: कोशिश करें कुसुम बहन कि भाई कम से कम अब जब आपका खेत पर जाएं तो कम से कम 8 से 10 गड्ढे आप अपने खेत के अंदर करें, कम से कम 6 से 7-8 इंच तक घेरे करें कम
1: बिल्कुल.
0: से कम, और अलग अलग गड्ढों की मिट्टी आप इकट्ठा करें और तब उसको इकट्ठे करके और उसको मिला करके तब एक सैंपल आप लेकर के अपने लैब के अंदर जाएं और अपनी मिट्टी की जो है आप अच्छी तरह से जांच कराएं.
1: बिल्कुल अतुल भाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को वैज्ञानिक

और देखिए, एक जानकारी और देना चाहते हैं भाई, कल हमारे सभी किसान भाई फल सब्जी और मिलेट्स लोक संगीत के साथ सुन सकेंगे। और कल देखिए, बातचीत के माध्यम से चारा फसलों जैसे चरी, बाजरा, ग्वार की बुआई और मानसून में हरे चारे का भंडारण किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं, इसकी जानकारी कल डॉक्टर समरपाल सिंह देंगे हमारे सभी किसान बहन भाइयों को। तो कल भाई आप अपना कार्यक्रम हमारा कृषि जगत जरूर सुने। और अब चलते चलते अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं उदल सिंह की आवाज में ये उपदेश।

0: तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे उदल सिंह की आवाज में ये उपदेश, और इसी उपदेश के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम
0: राम राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। यार इन्होंने

लता मंगेशकर और शमशाद बेगम के स्वर में फिल्म मुगले आजम की एक कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जगजीत सिंह की इस कव्वाली की तरफ।

इसी गीत के साथ गजल कव्वाली का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज और वित्त स्थिति की जांच अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस समिति का गठन दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 के अंतर्गत किया गया है। श्री सूद ने कहा कि ये समिति शिक्षा सत्र 2026-27 से 2028-29 तक की फीस तय करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी फीस बढ़ोतरी से पहले अभिभावकों की भागीदारी और सहमति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे फीस तय करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और अभिभावक हितैषी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
3: अब दिल्ली का कोई भी स्कूल बिना पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस के लिए, बिना फी रेगुलेशन कमेटी बनाए कोई स्कूल फीस के बारे में निर्णय नहीं कर पाए।
2: दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम के कामकाज और उनकी वित्त स्थिति की अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा गहन जांच की जाएगी। इस आदेश को महत्वपूर्ण बताते हुए ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये दिल्ली के बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय प्रत्येक बिजली उपभोक्ता और करदाता की जीत है। श्री सूद ने बताया कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण के बाद वर्षों तक अनेक वित्त निर्णय, विशेष व्यवस्थाएं और लगातार बढ़ती देनदारियां की सार्वजनिक जांच नहीं हो सकी।
4: बिजली कंपनियां मुनाफा कमाती रहीं और रेगुलेटरी एसेट के नाम पर 38,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के सिर पर कर्ज अरविंद केजरीवाल की सरकार ने चढ़वाया है, इसलिए उसका एक ऑडिट होना चाहिए। जब हमने CAG ऑडिट की बात की तो डिस्कॉम्स कोर्ट में चली गई। हमने बहुत मजबूती से केस लड़ा और हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर उसमें पास किया, जिसके आधार पर पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब डिस्कॉम के CAG ऑडिट के संदर्भ में हमने ऑर्डर पास किया है। बहुत जल्द CAG का ऑडिट इसके संदर्भ में होगा।
2: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। दिल्ली में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: SIR प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना प्रपत्र प्राप्त किया। दिल्ली कैंट के उपमंडल मजिस्ट्रेट और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी से भी गणना प्रपत्र प्राप्त किया। बूथ स्तर अधिकारियों ने आज एरिठाला, RK पुरम, मेहरौली और मंगोलपुरी सहित राजधानी के अन्य स्थानों पर घर घर गणना प्रपत्र वितरण का कार्य किया। दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन और अद्यतन के लिए वर्तमान मतदाताओं को पहले से छपे 2-2 प्रपत्र वितरित करेंगे। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल www.voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन प्रपत्र भी भर सकते हैं। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा

0: है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति 2026 आम नागरिकों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई जनहितकारी नीति है। उन्होंने आज कहा कि नीति के अंतर्गत संबंधी लाभों के अतिरिक्त दोपहिया वाहनों पर ₹50,000, ई ऑटो पर ₹75,000 और कमर्शियल गुड्स कैरियर पर ₹1,50,000 की बचत संभव होगी। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ईवी नीति के अंतर्गत रोड टैक्स से मिलने वाली छूट केवल नीति की अवधि तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि वाहन के पूरे जीवन काल तक लागू रहेगी। साथ ही वाहन खरीदते समय रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी पूरी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली परिवहन विभाग सभी पात्र मॉडलों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा। वाहन बुक करने से पहले नागरिक इस सूची की जाँच अवश्य करें। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय में ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत 70 लाख पौधे लगाने के अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने हर नागरिक से हरित, स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली के लिए इस जन आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नागरिक greendrive.delhivanmahotsav.in पर पौधारोपण के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।
2: इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली का हर एक निवासी जो चाहता है ग्रीन दिल्ली वॉरियर बनना उसमें जुड़ सकता है। इस पोर्टल पे वो अपने लिए स्लॉट बुक कर सकता है, जगह चुन सकता है कि किस समय वो पेड़ लगाना चाहता है और हम सब लोग अपने लिए स्पेस बुक करा सकते हैं और 11 तारीख से हमारे लिए वो बुकिंग ओपन होगी। हम जहाँ पेड़ लगाना चाहते हैं वहाँ पेड़ लगा पाएंगे।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नेक्स्ट कोड क्रिएट एंड चेंज कार्यक्रम की भी अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, शिक्षण संस्थानों और नवोन्मेषकों को एक साझा मंच पर लाकर नागरिकों और शहरी चुनौतियों के लिए तकनीक आधारित समाधान विकसित करना है।
2: 1 करोड़ इंजीनियरिंग माइंड जब इकट्ठे आए और 2.5 लाख लोग उसमें से रजिस्ट्रेशन करें और उसमें लगभग 5,000 इनोवेटिव सॉल्यूशन को देखा जाए और आज उसमें से 60 लोग सेलेक्ट करके इस फाइनल राउंड में यहाँ भेजा जाए तो मैं सच में कहना चाहती हूँ कि आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपकी इनोवेशन सच में काबिल-ए-तारीफ है। और यदि देश को आगे बढ़ना है तो उसकी ये जो युवा है इसको आगे ला करके उनकी वेवलेंथ पे आकर के उनके माइंडसेट को पढ़ के उनके आइडियाज पे काम करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
0: दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि राजधानी के सबसे पुराने जल शोधन केंद्र को अब आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1935 में स्थापित चंद्रावल जल शोधन केंद्र अब 10 करोड़ 50 लाख गैलन प्रतिदिन क्षमता वाला जल शोधन केंद्र बन रहा है जिसमें ग्रेन्युलर एक्टिवेटेड कार्बन, ओजोनेशन और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। लगभग 75,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित हो रही इस परियोजना का 82% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बोर्ड ने बताया कि इस परियोजना के पूर्ण होने पर करीब 22 लाख नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित पेयजल का लाभ मिलेगा। इस परियोजना को इस वर्ष सितंबर तक प्रारंभ करने का लक्ष्य तय किया गया है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने आज आदर्श नगर वार्ड का निरीक्षण कर मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री खिरवार ने आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास नालों की गाद सफाई के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज नरेला स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
3: डॉक्टरों को स्टाफ की कमी उन्होंने अपनी बात रखी है और यहाँ पे हल्की सी लापरवाहियां भी हैं। लापरवाही के लिए हम लोगों ने राउंड लेके जोर करने को कहा है डॉक्टरों को कि आगे से बूचे में दिल्ली की जनता और यहाँ के लोकल पब्लिक के इलाजों में कोई कमी नहीं होनी। दवाई की मात्रा यहाँ पे पूरी पाई गई, यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन काम की गति को और अच्छा करने के लिए जो डॉक्टर्स के सुझाव थे, जो माननीय विधायक जी के सुझाव थे, सुझाव के साथ स्वास्थ्य को और अच्छा

0: करने की जो बात थी हम उसी माध्यम से यहाँ पे आए हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस उपायुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस दौरान 2 विदेशी पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए।
2: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की एक टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान बेस्ड शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में थे। इनमें से 3 अभियुक्तों को पंजाब के बॉर्डरिंग एरिया से गिरफ्तार किया गया जो कि नार्को और आर्म्स कंसाइनमेंट ड्रोन के जरिए रिसीव किया करते थे। 1 अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जिसे दिल्ली में रिलीजियस प्लेसेज, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस स्टेशन, पुलिस नाकाज की रेकी करने का जिम्मा दिया गया था। हैंडलर्स ने उसे यह भी प्रॉमिस किया था कि उसे हथियार मुहैया कराया जाएगा गतिविधि को अंजाम देने के लिए। अभियुक्तों से 2 स्मॉल आर्म्स और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस भी बरामद किए हैं।
1: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान के फरूखाबाद में 125 साल पुराने गुरुद्वारा साहिब के गिराए जाने की कड़ी निंदा की है। श्री सिरसा ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब केवल सिखों की नहीं बल्कि मानवता की सांझी धरोहर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस तरह विरासत को नुकसान पहुंचाया जाना अत्यंत निंदनीय है।
3: गुरुद्वारा साहब की ये जो विरासत है ये केवल खाली सिखों की नहीं है, ये मानवता की विरासत है क्योंकि गुरुद्वारे में मानवता के भले की बात होती है, किसी धर्म की नहीं। मुझे बड़ा खेद है, पाकिस्तान में लाखों सिख पार्टीशन के बाद जो थे आज उनमें से केवल 8,000 सिख बचे हैं, बाकियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया और करते करते आज वो गुरुद्वारों पे भी हमले कर रहे हैं। जहां मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, वहां कहना चाहता हूं दुनिया भर को इसका संज्ञान लेना चाहिए।
1: दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता और ट्रांस यमुनक क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो हुआ है वो यूनेस्को के नियम का भी उल्लंघन है।
4: ये न केवल सिखों की भावनाओं को आहत और वहाँ की माइनोरिटीज चाहे सिखों हिंदुओं उनकी भावनाओं को आहत करने का काम है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी जो यूनेस्को है वो भी ये कहती है कि जो भी हेरिटेज साइट्स हैं और खास करके प्लेस ऑफ वर्शिप है, टेंपल है, जो 100 साल से अधिक समय की बिल्डिंग्स हैं, उनको सुरक्षित रखना वहाँ की सरकार का जो है कार्य है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन है। तो निश्चित रूप से हम इसकी घोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
1: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज ओमान से आए विद्यार्थियों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि इन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, खोज की भावना और सीखने के प्रति उत्साह देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वालों को भी दिया जाता है। नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर किए जा सकते हैं। कोई भी नागरिक, विद्यालय, संस्था या संगठन अपने द्वारा योग्य समझे जाने वाले उम्मीदवारों को नामांकित कर सकता है। बच्चे भी स्वयं।
1: दिल्ली में आज कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज और वित्तीय स्थिति की जाँच अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 306

66.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, हिंदी फिल्म संगीत के कुछ सदाबहार और दिल को छू लेने वाले नगमों के साथ कार्यक्रम गीत मालिका में मैं विजेता चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूं और कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों कहते हैं संगीत सीधा दिल तक पहुंचता है और हमें उम्मीद है कि ये गीत आपके दिल तक जरूर पहुंचा होगा, जिसे गाया मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम सिंदूर।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास को भी आपने सुना। क्या खूबसूरत गीत था। ऐसे गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर एक नई ताजगी का एहसास कराते हैं। क्या आपको भी ये नई ताजगी का एहसास हुआ या नहीं?

दोस्तों, फिल्मी गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि हमारी यादों, रिश्तों और भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। कोई गीत हमें बचपन की याद दिलाता है तो कोई किसी खास इंसान की।

अगर आपका भी किसी गीत को सुनकर हंसी पर एक मुस्कान आ जाती है तो समझिए कि संगीत ने अपना जादू चला दिया। अगर आप किसी पुरानी याद में खो जाते हैं तो समझिए कि संगीत ने अपना जादू चला दिया।

त्रिदेव फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, संगीत की ये खासियत है कि बिना किसी भाषा या सीमा के वो सीधे दिल में उतर जाता है। एक अच्छा गीत हमारे चेहरे पर मुस्कान भी ला सकता है और पुरानी यादों को ताज़ा भी कर सकता है।

श्रोताओं, संगीत केवल मनोरंजन नहीं करता बल्कि तनाव को कम करने का, मन को शांत करने का और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भरने का भी काम करता है। यही कारण है कि दिन की शुरुआत हो या दिन का अंत हो, एक अच्छा गीत हमेशा मन को सुकून देता है।

श्रोताओं, आपने शायद महसूस किया होगा कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम कितनी बार भी सुन लें, मन कभी नहीं भरता। उनकी धुन, उनके बोल और उनसे जुड़ी हमारी जो यादें होती हैं वो हमेशा ही ताज़ा रहती हैं।

इसी खूबसूरत गीत के साथ आप मुझे आपसे विदा लेने की अनुमति दीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही सुनते रहिए अपने पसंदीदा फिल्मी गीत।

0: इसी के साथ गीत मालिका का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार

0: अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए

0: समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
1: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-17

0: 27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth, holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum

0: दिल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात लॉस एंजलिस में राउंड ऑफ 32 के मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इक्तिसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरका इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफ्फुज, मस्नूई जहानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकतदारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
0: जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची ने अपने खिताब में कहा कि तावुन के बहुत से शोबों के माबेन तवानाई का तहफ्फुज इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई के तहफ्फुज को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज पेश की थी ताकि पैदावारी और सारिफीन मुल्कों के दरमियान आजाद और शफाफ तवानाई की तिजारत करने, तवानाई के जामे जखीरे का ऐलान करने और तावुन को फरोग देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाईची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफ्फुज, अदविया और मस्नूई जहानत के शोबे शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर नई दिल्ली में अपनी जापानी हमनसब सनाई तकाईशी के साथ सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस सतह की बातचीत की। ये चोटी कॉन्फ्रेंस वाहमी ताल्लुकात के मुकम्मल शोबों का इहाता करने और उन्हें दवाम बख्शने की गरज से दोनों मुल्कों के लिए मौका फराहम करने के साथ साथ वाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका भी फराहम करती है। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने उजागर किया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल हैं और एक आजाद और खुला भारत बहरुल काहिल दोनों ममालिक के लिए एक मुश्तरका तरजीह है।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये ताल्लुक एतमाद पर मबनी है और आज की मसरूफियात के दौरान एतमाद नुमाया तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज की मसरूफियात में तवानाई के तहफ्फुज और इक्तिसादी तहफ्फुज समेत शोबों में अच्छे नतायज हासिल हुए हैं। आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामे जखीरा अंदोजी, पेट्रोलियम रिजर्व के तरीक़ेकार और समुद्री तवानाई की नकलो हरकत के अकदारी सिलसिले से मुतालिक तआवुन को और गहरा करने से

0: वादी पहुंच गया। ये काफिला 4,822 यात्रियों पर मुश्तमिल है। इनमें 2,510 यात्री पहलगाम जबकि 2,312 यात्री बालतल के रास्ते कल सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। बेस कैंप पहुंचते ही इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोगों ने यात्रियों का वालेहाना इस्तकबाल किया। यात्रा के एहसन इनेकाद के लिए दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के पूरे रास्ते पर पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज के इजाफी अहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा तिब्बी खदमात की फराहमी, मौसमी हालात की निगरानी की सहूलियात के अलावा हसास मकाम पर क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को भी मामूर किया गया है। अलावा अजी यात्रा के रूट्स पर सीसीटीवी कैमरे और यात्रियों नीज गाड़ियों के लिए RFID ट्रैकिंग निजाम भी नस्ब किया गया है। उर्दू खबरों के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने मंसूख कर दिए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। धारचूला के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि इंतजामिया मौसम के हालात का जायजा लेकर परमिट फिर से जारी करने पर गौर करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, वस्ती महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में गर्म और हब्स वाला मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। गुजरात में मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है जिसकी वजह से 109 तालुका में तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर स्वराष्ट्र और जुनूबी गुजरात में जूनागढ़ जिले के मंगरौल में आज रियासत भर की सबसे ज्यादा 8 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से स्वराष्ट्र और जुनूबी गुजरात खित्ते के नशेबी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2-3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल जखायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले 1 साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मैट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैनुल अक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم

هل حنت ع غيري وزارت علي علي ومين مثلي مجد عطيه.

حالي وألحان حبي أعطيتها هدية وما قابلت بالمثل.

عهستيحاك السهرية هموم الدنيا عنك

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच

के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय शिक्षक प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अकादमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट अगले महीने की 23 तारीख से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ साथियों, एक और खूबसूरत गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत है, और ये काहे करता देर बराती। जी हाँ, ये फिल्म का नाम हम बता देते हैं, ये किस फिल्म का गीत है। तो ये गीत है औरत। जी हाँ, औरत फिल्म से गीत है, और सिंगर हैं जो गायक हैं अनिल विश्वास हैं। ये फिल्म औरत 1940 प्रदर्शित फिल्म रही है, और संगीत से सजाया है अनिल विश्वास ने ही। तो ऐसे सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, वो दिन याद करो, बहुत ही सुंदर बेहतरीन लाजवाब रचना। एक और गीत आ रहा है साथियों, एक बहुत ही प्यारा गीत है, ख्यालों में किसी से। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सुंदर खूबसूरत गीत है और ये गीत वाकई लाजवाब है। तो सुनवाते हैं ये खूबसूरत रचना, ख्यालों में किसी से, फिल्म बावरे नैन से, मुकेश और गीता रॉय की आवाज़ में सुंदर रचना। बावरे नैन फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही, गीत केदार शर्मा के हैं और संगीत से सजाया है रोशन ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।
1: ये तस्वीर तो मेरी है।
2: नहीं, ये तस्वीर है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है, और इससे मैं कहती हूँ

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत तभी आप सुन रहे थे। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। गीत सुनहरे वाकई बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है, जिसमें गोल्डन एरा यानी कि बिल्कुल खरे सोने की तरह एक से एक बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत गीतों का समावेश बनता है। एक ऐसे अनमोल खूबसूरत गीत संगीत के खजाने से लेकर आते हैं हमारे साथी। जी हाँ, जिस प्रकार से हम लेकर आते हैं, ऐसे ही हमारे जो श्रोता साथी हैं ऐसे गानों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि गीत संगीत का आनंद लेना हो तो सच में जो सुनहरे दौर की जो एक अलग पहचान होती है, आज भी जो सीनियर श्रोता साथी

दिल की उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर, दिल की उमंगे हैं जवां, वाकई बिल्कुल अलग मजाकिया काइंड ऑफ सॉन्ग, बहुत ही अलग एक्टिंग, लाजवाब खूबसूरत रचना। एक और गीत आ रहा है आपके पास। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा गीत है, तो सुनवाते हैं ये शानदार रचना। इस रचना के बारे में कुछ जानकारी हम बता देते हैं। लेके पहला पहला प्यार CID फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम की आवाज़ में शानदार रचना है। ये फिल्म 1956 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सजाया है OP नैयर ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत गीत।

सुंदर बेहद खूबसूरत गीत लेके पहला पहला प्यार ऑल टाइम फेवरेट लाजवाब खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। यह दोस्तों वाकई बहुत ही प्यारा गीत है। मैंने चांद और फिल्म चंद्रकांता से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में शानदार रचना। यह फिल्म चंद्रकांता 1956 प्रदर्शित फिल्म रही। गीत सिप्पी फिल्म्स द्वारा है और गीत संगीत से सजाया है एन दत्ता ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। ये राती नई पुरानी, वाकई बहुत ही प्यारा गीत, लाजवाब रचना। साथियों, समय 2 बजने को है, केवल 2 या 3 मिनट बाकी हैं, तो इसी दौरान एक गीत सुनहरे कार्यक्रम की अंतिम बेहद खूबसूरत रचना सुनवा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत रचना, भीगी हुई इस रात का। जी हाँ, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, आशा भोसले की आवाज में शानदार रचना। नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, ये फिल्म ही वो 1966 प्रदर्शित फिल्म रही। गीत मूवी मोन्यूमेंट के हैं और संगीत से सजाए हैं मदन मोहन ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना, आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की अंतिम रचना।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेवार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय टीचर ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये एकेडमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों की प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की

प्यार कर

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीतों का जो समावेश बन रहा है, एक से एक लाजवाब खूबसूरत गीत। एक और गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा सुंदर खूबसूरत रचना है और ये रचना वाकई बहुत ही सुंदर है, बेमिसाल है, खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये गीत वाकई अपने आप में बेहद खूबसूरत है। बीते ना बिताई रैना, बहुत ही सुंदर लाजवाब रचना है। आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, बीते ना बिताए रहना, फिल्म परिचय से, जो 1972 प्रदर्शित फिल्म रही, लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में शानदार रचना, गीत गुलजार के और संगीत राहुल देव बर्मन का था। सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत, अनमोल रचना। जी हाँ, रात का समय है, 3:10 बाकी हैं। हम हैं आपके साथ अभी भी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। साथियों, आकाशवाणी में एक ही स्टूडियो में दो फ्रीक्वेंसी चल रही हैं। एक है इंद्रप्रस्थ चैनल, जिसमें आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, और दूसरा AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आप दोनों ही फ्रीक्वेंसी में कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। साथियों, अभी जो गीत आपने सुना, इस रात के सन्नाटे में बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत रहा और बहुत ही प्यारा, फिल्म दो चेहरे से आशा भोसले की आवाज़ में

सुंदर गीत। फिल्म दो चेहरे 1975 रिलीज फिल्म रही है और गीत रतन प्रोडक्शन द्वारा है और गीत संगीत को सजाया है सोनिक ओमी ने। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। जब दीप जले आना, जब दीप जब शाम ढले जाना, बहुत ही सुंदर ऑल टाइम फेवरेट खूबसूरत गीत है। तो आइए सुनवाते हैं ये शानदार रचना। साथियों, जब दीप जले आना फिल्म चितचूर से है, यशुदास और हेमलता की आवाज में शानदार खूबसूरत रचना है। फिल्म चितचूर 1976 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत राजश्री प्रोडक्शन द्वारा है और संगीत से सजाया है रविंद्र जैन ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर गीतों का समावेश आप सभी साथियों ने मिलकर बांधा है। वाकई हमें भी अच्छा लग रहा है और वाकई रात का समा बिल्कुल अलग ही होता है। बिल्कुल एकांत में सुंदर बेहतरीन रचनाओं का सुनने का आनंद एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, ना जाने कितने गुना बढ़ जाता है, है ना। वाकई बहुत ही शानदार साथियों। और इतने सारे गीतों के साथ साथ, हालांकि 3 घंटे हो चुके हैं हमें और बस 5 मिनट ही बाकी है, बल्कि 4 मिनट बाकी है, और एक गीत सुनाना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि क्योंकि आजकल बहुत सारे शादियों का माहौल भी चल रहा है और ऐसे में बर्थडे भी किसी का मनाया जा रहा है, ऐसे में वेडिंग एनिवर्सरी भी मनाई जा रही है, तो हम सभी के लिए एक गीत डेडिकेट करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही शानदार है। तो अर्चना जोशी और अनिल जोशी, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो इसलिए तो उनके लिए एक गीत समर्पित कर रहे हैं हम, यानी कि मैं आपका दोस्त ललित कुमार। और सभी से उम्मीद करता हूं कि सभी साथी खुश होंगे और मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो सुनवाते हैं ये शानदार बेहतरीन रचना आज के कार्यक्रम गीत बहार की अंतिम रचना, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ साथियों, इसी गीत के साथ गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। समय हुआ है 3:03 बजने वाले हैं और अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों तथा प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी मुग्दाहान प्रांत में तीर्थ यात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि मुग्दाहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थ यात्रा पर थे। फीफा विश्व कप में स्पेन ने राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारबाजाल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई।

आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीतों और गजलों का। अभी आपने सुनी राधिका चोपड़ा की आवाज में ये बेहतरीन सी गजल। आइए सुनते हैं अगली पेशकश चित्रा सिंह की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतों और गजलों का कार्यक्रम, और इसमें अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत। आइए सुनते हैं धीरा गोशा की आवाज में

अभी आपने सुनी धीरा घोष की आवाज में ये खूबसूरत सी पेशकश। लीजिए सुनते हैं अगली नज्म जगजीत सिंह जी की आवाज में।

अभी आपने सुनी खूबसूरत सी पेशकश मीलू शर्मा की आवाज़ में। श्रोताओं, गीत गज़लों का कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है और हम आपको छोड़े जा रहे हैं जगजीत सिंह जी की इस खूबसूरत सी पेशकश के साथ। फिलहाल अपनी दोस्त सारिता को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का एआई लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4 बजने को है। ये वक्त होता है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम अर्चना का। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अभी आप पारशाला बी पूर्णमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरैशा सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: लीजिए अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज के नाद ब्रह्म कार्यक्रम में आप सुनेंगे यल्ला वेंकटेश्वर राव का तालमादि में तालवाद्य कचहरी।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए अब आपको इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अर्ध मत्स्येन्द्रासन के बारे में। प्रातः 5:20 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। प्रातः 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, प्रातः 6:10। 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन। आज के चिंतन में आप सुनेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। प्रातः 6:45 पर श्री रामचरितमानस से पाठ। आज इसमें आप सुनेंगे बालकांड का भाग 105। प्रातः 7:10 पर आप सुन सकते हैं संगीतिका। 7:30 का वक्त रहेगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग इस कार्यक्रम का। प्रातः 8:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा प्रसारित किया जाएगा और 9:15 पर गांधी चर्चा। आज के गांधी चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता ग्रामीण विकास और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के बारे में गांधी जी के विचार। मिट्टी दी महक इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा प्रातः 9:30। फिल्म संगीत आपकी पसंद, जी हाँ, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रातः 10:10 पर। सबरस का वक्त रहेगा 11:10 और सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रातः 11:30 पर। तो ये थी आज प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5:00 को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान की संबंध अति विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच से श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा

0: अब भारत की गति और व्यापकता के साथ एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों को की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा आज ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। सीरिया के दमिश्क के एक कैफे में विस्फोट में 9 लोगों की मौत की खबर है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारजाबल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच के मैच के विजेता से होगा। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त को गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India and Japan have reaffirmed their shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interests, and

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुले एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें।